मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सवेरे के 6 बजे हैं। अब आकाशवाणी से समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों

0: की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे जगत चलनी, मैं न मंत्र जानता हूं न तंत्र जानता हूं, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि तेरी शरण ही क्लेश हरण है।

हे शरणदायिनी देवी माँ, तू करती सबका त्राण है, प्यार बहा दे हम पर मैया, तू जननी तू प्राण है।

हे प्रभु, आप चराचर जगत के स्वामी हैं, प्रकृति के कण कण में आप ही समाये हैं। आप अगम हैं, अगोचर हैं, फिर भी ये आंखें आपके दर्शन को प्यासी हैं, मन आपके शुभ दर्शन का अभिलाषी है प्रभु।

0: प्रेम गली अति साकरी जामे द्वैन समाए, जब मैं था तब हर नहीं अब हर हैं मैं नाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने जगजीत सिंह, श्रुति शेडोलकर, MS सुब्बुलक्ष्मी और साथियों के स्वर में भजन सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार।
1: इतिहास के इस युग में पुरुष का वर्चस्व है। वो एक ऐसी संस्कृति गढ़ रहा है जिसमें शक्ति का बोलबाला है। नारी का स्थान इस संस्कृति में गौण है। यही कारण है कि आज संस्कृति में संतुलन नहीं और वो एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर जा रही है। वर्तमान संस्कृति की प्रेरक शक्तियाँ विनाश की शक्तियाँ हैं। हर ओर मानव जीवन की आहुति दी जा रही है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ये एकांग की संस्कृति जगह जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। समय आ गया है कि नारी अब संस्कृति में हस्तक्षेप करे। नारी का दायित्व धरती के समान है, जो न सिर्फ वृक्ष के बढ़ने में मदद करती है बल्कि उसके विकास को सही सीमा में भी रखती है। वृक्ष के चारों ओर शाखाएं फूटती हैं, लेकिन उसके सभी गहरे बंधन धरती में होते हैं और वहीं से वो जीवन पाता है। नारी मानव संबंधों का केंद्र है। परिवार ही मुख्यतः उसका संसार है। यहाँ वो व्यक्ति को सही अर्थों में व्यक्ति बनाती है। ये कार्य वो प्रेम और स्नेह के माध्यम से करती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पारिवारिक जीवन ही नारी का जीवन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति और संगठन ये अलग मानवीय संसार ही नारी का संसार हैं। ये मानवीय संसार परिवार से बाहर भी जीवन की अनेक गतिविधियों में देखा जा सकता है। शक्ति के गर्भ में पुरुष को सब मानवीय चीज़ों और रिश्तों का मानवीय मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। यही कारण है कि आज नारी भी ऊंची आवाज में ये कह रही है कि वो नारी नहीं है। वो शक्ति और संगठन के क्षेत्र में खुद को पुरुष के समान सिद्ध करना चाहती है। उसे मानव जाति की जन्मदाती या

0: गृहस्थ को चलाने वाली कहा जाता है तो उसके सम्मान और अभिमान को ठेस लगती है। उसे इस दुखद मानसिक स्थिति में लाने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है। आधुनिक संस्कृति ने अपने धन और शक्ति के कारण नारी का संसार उससे छीन लिया है। घर धीरे धीरे दफ्तर में बदलता जा रहा है। पुरुष मानो सारे संसार पर अधिकार जमाने पर आमादा है। नारी के स्थान उसकी भूमिका के संबंध में वो चिंतित नहीं। नारी का घर बिखर रहा है, लेकिन वो स्वयं बिखरी या टूटी नहीं है। पुरुष के अत्याचारों के बावजूद वह जिंदा है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम करंट अफेयर्स। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल कार्यक्रम 9:15 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान और 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे श्री ब्रजेश अग्रवाल की वार्ता। विषय रहेगा खरीफ में अरहर की खेती।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर मनोज शर्मा की लघु वार्ता एड्स कारण और बचाव। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज शुक्रवार है। आज के दिन सुबह 9:25 पर आप सुनते हैं गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वचन और विचार के संबंध में गांधी जी के विचार। कार्यक्रम होगा आज के कलाकार पूर्वाहन 11:00। इसमें आज हम बात करेंगे अभिनेता पंकज कपूर के बारे में। 11:30 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। विषय रहेगा जल है तो कल है, पेयजल बर्बाद न करें। दूसरा विषय रहेगा गर्मी में संतुलित खानपान से स्वास्थ्य रक्षा। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी चर्चा स्वच्छता ही सेवा है। सुश्री स्वीटी गोस्वामी का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। क्रम रहेगा मेरी पहचान, फैशन ब्यूटी और रेसिपी टाइम। दोपहर 3:00 प्रोग्राम अंजुमन नश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज आप समाप्त करेंगे मखाला। मौजू रहेगा अदब जबान और मुआशरा। मकाला निगार होंगे जनाब अली मोहम्मद जौहर। इसी प्रोग्राम में जनाब इमरान खान अपना कलाम पेश करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में अफसाना नश किया जाएगा

उन्वान रहेगा जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार होंगी मोहतरमा सादिया राशिद। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा, संयुक्त राष्ट्र शांति, सैनिकों की उपयोगिता। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में एक लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान। वार्ताकार होंगे इल्मा रफी। क्रम रहेगा वैज्ञानिकी और आज के हम सफर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अनम का काव्य पाठ। ग्रामीणों कार्यक्रम में 6:00 बजे चर्चा का विषय रहेगा हमारे स्वास्थ्य का आधार हमारा पाचन। डॉक्टर अनंत कुमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी, कृषि विविधीकरण की आवश्यकता। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 बजे हमारे श्रमिक भाई सुनेंगे वार्ता, माता पिता और पत्नी के लिए भरण पोषण कानून। वार्ताकार होंगे श्री घूरेलाल। विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक तिवारी की वार्ता, कन्हैया लाल मिश्र की हिंदी साहित्य सेवा। और कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश 7:31 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेशी। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री ब्रजेश अग्रवाल की वार्ता। विषय है खरीफ में अरहर की खेती।
1: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, दलहनी फसलों में हमारे प्रदेश में चने के बाद अरहर का स्थान है। ये फसल अकेली तथा दूसरी फसलों के साथ बोई जाती है। ज्वार, बाजरा, उर्द और कपास अरहर के साथ बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। हमारे प्रदेश की उत्पादकता अन्य राज्यों की अपेक्षा औसत से ज़्यादा है। सघन पद्धतियों को अपनाकर इसे और बढ़ाया जा सकता है। खेत का चुनाव। अरहर की फसल के लिए बलुई दोमट व दोमट भूमि अच्छी होती है। उचित जल निकास तथा हल्के ढालू खेत अरहर के लिए सर्वोत्तम होते हैं। लवणीय तथा क्षारीय भूमि में इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। जहां पर जल भराव की स्थिति हो, वहां पर किसान भाई अरहर की फसल ना बोएं। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करनी चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए। उन्नतशील प्रजातियां, अगेती प्रजातियों में टाइप 21, UPAS 120, पूसा 6 और ICPL 151 मुख्य हैं। देर से पकने वाली प्रजातियों में टाइप 7, टाइप 17, बहार, अमर, नरेंद्र, अरहर 1 तथा आजाद मुख्य हैं। बुआई के समय में देर से पकने वाली प्रजातियां टाइप 7 तथा टाइप 17, जो लगभग 270 दिन में तैयार होती हैं, की बुआई जुलाई माह में करनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को सिंचित क्षेत्रों में जून के मध्य तक बो देना चाहिए, जिससे ये फसल नवंबर के अंत तक पककर तैयार हो जाए और दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में गेहूं की बुआई संभव हो सके। बीज का उपचार करने के लिए किसान भाई सर्वप्रथम 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम व 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बोने से पहले हर बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर को साफ पानी में गोल बनाकर 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़काव हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर हल्की परत बन जाए। इस बीज की बुआई तुरंत करें। तेज धूप से कल्चर के जीवाणु के मरने की आशंका रहती है, इसलिए किसान भाई इस बात का ख्याल रखें। ऐसे खेतों में जहाँ पर अरहर की पहली बार काफ़ी समय बाद बोई जा रही हो, कल्चर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बीज की मात्रा तथा बुआई विधि। बुआई हल के पीछे कुंडों में करनी चाहिए। प्रजाति तथा मौसम के अनुसार बीज की मात्रा तथा बुआई की दूरी रखनी चाहिए। बुआई के 20-25 दिन बाद पौधे की दूरी सघन पौधों को निकालकर निश्चित कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा प्रजाति टाइप 17 के लिए 10 से 12 किलोग्राम, टाइप 21 तथा टाइप 7 के लिए 12 से 15 किलोग्राम, UPAS 120 और आजाद के लिए 15 किलोग्राम, नरेंद्र 1, अमर और बहार प्रजाति के लिए 15 से 20 किलोग्राम और ICPL 151 के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ या लगातार वर्षा के कारण बुआई में विलंब होने की दशा में किसान भाई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में बहार की शुद्ध फसल के रूप में बुआई की जा सकती है, परंतु कतार से

0: तार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा बीज की मात्रा 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। उर्वरकों के प्रयोग में अरहर की अच्छी उपज लेने के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन तथा 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अरहर की अधिक से अधिक उपज लेने के लिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम या 100 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट पंक्तियों में बुवाई के समय चोंगा या नाई की सहायता से देना चाहिए, जिससे उर्वरक का बीज के साथ संपर्क न हो। ये उपयुक्त होगा कि फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से दी जाए, जिससे 12% सल्फर की भी पूर्ति हो सके। यूरिया खाद 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केवल उन खेतों में जो नत्रजन तत्व में कमजोर हों देना चाहिए। उड़द जैसी सह फसलों को अरहर के लिए प्रयुक्त खाद की आधी मात्रा दें। ज्वार तथा बाजरा की सह फसलों के रूप में बुआई के समय उनकी पंक्तियों में 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें। एक महीने के बाद 10 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग करें। सितंबर में बुआई हेतु 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन के प्रयोग से किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई अरहर टाइप 21 UPAS 120 तथा ICPL 151 को प्लेवा करके तथा अन्य प्रजातियों को वर्षा काल में पर्याप्त नमी होने पर बोना चाहिए। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई कलियां बनने के समय अक्टूबर माह में अवश्य करें। किसान भाई इस बात का ख्याल रखें कि देर से पकने वाली प्रजातियों में पाले से बचाव हेतु दिसंबर या जनवरी माह में सिंचाई करना लाभप्रद रहता है। निकाई गुड़ाई करने के लिए वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3-4 सप्ताह बाद काफ़ी हो जाती है। अंत बुआई के एक माह के अंदर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि अरहर की शुद्ध खेती की गई हो तो दूसरी निराई पहली निराई के 20 दिन बाद करें। घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिए पैंडी मैथलीन स्टाम्प 30 EC 3 लीटर या एलाक्लोर लासो 4 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद पाटा लगाकर जमाव से पूर्व छिड़काव करें, अथवा फ्लू क्लोरोलिन 45 EC नामक रसायन की 1.65 लीटर मात्रा को अवश्य पानी में घोलकर आखिरी जुताई से पहले भूमि पर छिड़काव करके मिट्टी में मिला दें। फसल सुरक्षा में किसान भाई कीट में फली भेदक कीट जो है ये मुख्य है। इसकी गिटारें फलियों के अंदर घुसकर हानि पहुंचाती हैं। क्षतिग्रस्त फलियों में छिद्र दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम हेतु निम्न में से एक कीटनाशक रसायन का छिड़काव किसान भाई फसल में फूल आने पर कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो इसका छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा करना चाहिए। इसमें मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या फेनवेलरेट 20 EC का 100 ग्राम अथवा साइपरमेथ्रिन 20 EC का 80 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या एंडोसल्फान 4% या मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनलफास 1.5% अथवा फेनवेल 0.4% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। NPP 350 LE प्रति हेक्टेयर, निबोली 5% और 1% साबुन का घोल का प्रयोग करें। पत्ती लपेटक कीट सुंडियां, इसकी सुंडियां जो हैं वो पीले रंग की होती हैं, जो पौधों की चोटी की पत्तियों को लपेटकर सफ़ेद जाला बुनकर उसी में छिपी पत्तियों को खाती हैं। बाद में फूलों तथा फलियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम हेतु निम्न में से किसी एक कीटनाशक का छिड़काव अथवा बुरकाव करें। मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मिथाइल पैराथियन 2% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या एंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अरहर की फली मक्खी फली के अंदर दानों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के बाद मोनोक्रोटोफास 36 EC या डाइमेथियोट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव करें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री ब्रजेश अग्रवाल की वार्ता खरीफ से अरहर की खेती। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 हुए हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मनोज शर्मा की लघु वार्ता। विषय है एड्स, कारण और बचाव।
1: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया जिस एक भयंकर बीमारी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है वो है एड्स। और एड्स का शिकंजा धीरे धीरे जिस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है वो एक बहुत चिंताजनक पहलू है। तो डॉक्टर साहब, एड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि दरअसल एड्स है क्या और इससे किस तरह से बचा जा सकता है।
2: एड्स एक बीमारी का समूह है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस की वजह से फैलता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस।
1: अच्छा,
2: ये वायरस बहुत पहले साउथ अफ्रीका में चिंपैंजी में पाया जाता था।
1: अच्छा,
2: और वहां से कुछ लोग जो शिकार के लिए जाते हैं तो चिंपैंजी का ब्लड उनके हाथ में लगा, जहां हाथ भी कट गया किसी चीज से, वहां से ये आदमियों में फैला। सबसे पहला मरीज अमेरिका में सन 1982-83 में पाया गया था।
1: अच्छा,
2: उसके बाद ये एक महामारी के रूप में सभी देशों में फैल गया, जिसमें भारत में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा मरीज और संक्रमित रोग संक्रमित मनुष्य हैं।
1: अच्छा,
2: तो अभी जो संक्रमित लोग हैं, संख्या है जिनकी, वो फुल एड्स में अभी नहीं बदल पाए हैं। इसीलिए ये संभावना है कि आगे आने वाले भविष्य में ये रोग एक एपिडेमिक की तरह भयावह होगा। तो अभी हमें इस रोग को रोकने के लिए कि ये आगे ना बढ़े, जहां है वहीं रहे, वहीं से खत्म हो जाए, इसको रोकने के लिए हमें ये ज्ञान रखना बहुत जरूरी है कि ये कैसे एक दूसरे से फैलता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, उससे पहले एक चीज और थोड़ा सा जानकारी दे दें कि इस रोग के क्या लक्षण क्या होते हैं।
2: इसमें दो स्थितियां हैं। एक, जैसे मैंने बताया कि HIV वायरस से इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, तो हो सकता है कि उसको शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा लक्षण ना आए, थोड़ा सा जुकाम खांसी हो जाए, बदन में दर्द हो रहा है, कमजोरी सी आ रही है, उसको एड्स नहीं कहते। लेकिन क्योंकि उसमें वायरस शरीर में है और वो बहुत बुरी तरह से उसके अंदर संख्या बढ़ा रहा है अपनी, वो वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खाता है।
1: अच्छा,
2: और शरीर को इतना कमजोर बना देता है कि कोई भी दूसरा बैक्टीरिया आके उसके ऊपर बैठ जाता है, कोई भी दूसरा रोग लग जाता है।
1: अच्छा,
2: अब जो रोग लगता है उसी के लक्षण आते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस लग गया तो खांसी, जुकाम, टीबी के सारे जो लक्षण हैं, बलगम आएगा, खून आएगा, कई तरह के कैंसर भी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे कैंसर को बचाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता रखता है।
1: इसका मतलब कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त कर देता है।
2: जब वो प्रतिरोधक क्षमता एक निश्चित मात्रा के बाद समाप्त हो जाती है तब उसको एड्स का रोगी कहते हैं। उससे पहले उसको HIV वायरस का संक्रमित मनुष्य कहा जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे ये एक से दूसरे में जाता है?
2: इसके जाने के लिए एक सबसे बड़ा अहम जो माध्यम है वो है सेक्स।
1: अच्छा,
2: जब कोई संक्रमित मनुष्य किसी दूसरे से सेक्स करेगा तो क्योंकि द्रव्य, उस संक्रमित मनुष्य का द्रव्य दूसरे के जननांगों में जाएगा, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि दूसरा मनुष्य भी इससे संक्रमित हो जाएगा, चाहे वो आदमी हो या औरत हो।
1: अच्छा,
2: आदमी और औरत, होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल, दोनों में ये संक्रमित होता है।
1: अच्छा,
2: दूसरा कारण इसके अलावा जैसे कि संक्रमित ब्लड है, संक्रमित कोई द्रव्य है जो आपने शरीर में चढ़ाया और उसकी प्रॉपरली चेक नहीं हो पाया। तीसरा ये होता है कि संक्रमित ये माँ है और बच्चे को जन्म दे रही है, तो बच्चे के चांसेस हैं, पूरे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उसके चांस हैं कि वो इससे इन्फेक्टेड हो जाए। चौथा, कुछ लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक सिरिंज जो संक्रमित मनुष्य उससे ली, दूसरे में लगाई, तो उससे भी फैल सकता है। क्योंकि अभी इस बीमारी का कोई कारगर इलाज नहीं है, इसलिए हमें इससे बचना और इसके फैलने से रोकने देना ही एक सबसे बड़ा इलाज होगा। वैसे इलाज के द्वारा हम

0: कोशिश कर सकते हैं कि एक मरीज को कुछ लंबे समय तक जीवित रखें। अंततः बचाव ही इसका सर्वोत्तम इलाज है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था एड्स कारण और बचाव। इस विषय पर डॉक्टर मनोज शर्मा से भेंट कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं समवेश स्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेत स्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 हुए हैं। देशभक्ति परक गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर, पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM।

0: की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितब्रा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितम्बरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और

0: पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 7:32 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कल जो आंधी आई, कुछ बूंदाबांदी हुई और तेज हवाएं चली, उससे थोड़ी सी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जो बहुत तेज आंधी और तूफान आया उससे काफी नुकसान भी हुआ। जगह जगह पर काफी पेड़ गिर गए, बिजली के पोल गिर गए और इसकी वजह से कई इलाकों में रात में विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही और इससे न केवल घरों में अंधेरा रहा बल्कि अगर रात थी, सोने का समय था, तो बहुत सारे लोग ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि उनके AC और कूलर पंखे नहीं चल सके। ऐसे में हमको याद आता है गांव का खुला आंगन और खुला घर, जिसमें कम से कम आंगन में आप लेटकर कम से कम रात गुजार सकते हैं, सो सकते हैं। खैर, ये शहर और गांव का थोड़ा सा अंतर तो हमेशा बना रहता है, लेकिन जो मौसम में बदलाव आया है ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए है और जिस तरह का कि प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि अभी भी ये मौसम 30-31 मई तक ऐसे ही रहेगा। हवाएं तेज चलेंगी, बीच में आंधी भी आएगी, तूफान भी आ सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। और अभी तक जो स्थिति है, कल जैसा कि सोच रहे थे कि बारिश भी होगी, तो बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि तापमान में कम से कम 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है और जो गरम गरम हवाएं चल रही थीं, लू के थपेड़े लग रहे थे घर से बाहर निकलते समय, उनमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अब मौसम बदल जाएगा। गर्मी मई का महीना है, जून आने वाला है, अभी पूरा महीना जून का है, तो गर्मी तो अभी पड़ेगी। और जैसा कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में 9 दिन ऐसे आते हैं जब सूरज धरती के सबसे ज़्यादा निकट होता है और बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, गर्मी बहुत रहती है, तो वो 9 दिन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वो 9 दिन अभी चल रहे हैं और गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। गर्मी में जब भी आप काम के लिए निकलें तो कुछ सावधानियां ज़रूर रखें, कुछ एहतियात बरतें और लू से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो ज़रूर करें। लू हमें तभी लगती है जब हम बहुत तेज़ धूप में घर से बाहर निकलते हैं या कहीं कोई काम करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि दिन में

छह बजे से लेकर 3 बजे के मध्य सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा धूप रहती है, तो इस दौरान घर से ना निकलें। और अगर घर से आप बाहर निकल भी गए हैं तो कहीं पेड़ की छाँव में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां आप धूप से बच सकते हैं वहां आप बैठ सकते हैं। और अपने साथ पानी हमेशा रखिए, क्योंकि अपने आप को हम हाइड्रेट रखेंगे तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी पानी की कमी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है, और तेज़ धूप में काम करेंगे पानी की कमी होगी, तो इसी को तो लू लगना कहते हैं, और हीट स्ट्रोक भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। कई बार होता है कि पेय पदार्थ हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, या हम आपसे ये कहें कि आप रोज़ाना जूस पीजिए, फलों का रस पीजिए, तो ये भी देखिए संभव नहीं है और सबके लिए संभव नहीं है। ये कहने की बातें बड़ी आसान हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन हाँ, पानी एक ऐसी चीज़ है जो उपलब्ध है और इसे हम आसानी से अपने साथ रख सकते हैं, और कहीं भी अगर हमें पानी मिलता है तो तुरंत वहाँ से पानी को आप अपने साथ बॉटल में या किसी बर्तन में आप भर लीजिए और अपने साथ रखिए। और सूती हल्के कपड़े पहनिए, और जब भी आप काम करते हैं, अब ये तो है नहीं कि आप पूरे दिन छाँव में बैठे रहेंगे, काम करेंगे तो धूप में तो निकलना ही पड़ेगा, तो आप अपने सर पर गमछा, अंगोछा या साफी, जो भी आपके यहाँ कहते हों इस चीज़ को, उसे आप अपने साथ में रखिए। और अगर आपको ज़रा सा भी महसूस होता है कि सर में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं या थकावट या कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपका जी मिचला रहा है या उल्टी आने की कुछ इस तरह की लग रहा है आपको, या फिर आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, या फिर आपकी त्वचा लाल हो रही है, या पसीना एकदम से आना आपको कम हो गया या बंद हो गया है, तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो आप फौरन चिकित्सक से सलाह ले लीजिए और घर पर आराम कीजिए। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने साथ, देखिए ग्लूकोज भी हम लोग हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे पास जो पानी है उस पानी में हम थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, अगर नींबू वगैरह है तो और भी अच्छी बात है, नींबू डालकर रख सकते हैं उसमें, तो जहाँ भी ज़रूरत है उसे हम पी सकते हैं, और तेज़ धूप में, गर्मी में इस तरह से हम लू से बचाव कर सकते हैं। लू का सबसे ज़्यादा असर, गर्मी का सबसे ज़्यादा असर जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर जो रक्तचाप के मरीज़ हैं उनको भी हो जाती है। डायबिटीज़ के भी मरीज़ आजकल बहुत हैं, उनको भी बहुत जल्दी गर्मी लगती है, लू लगती है। तो ये कुछ छोटे मोटे से उपाय हैं जिनको हम उपयोग में लाकर लू से या गर्मी से बच सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खूब पानी पिएं। और गर्मियों में तली भुनी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ये भारी मानी जाती हैं, पाचन भी ठीक से नहीं होता है इनका, और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनका पाचन आराम से हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि तला भुना बिल्कुल मत खाइए, बहुत हल्का खाइए, दाल रोटी सब्जी खाइए, अगर दही मट्ठा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शरीर को ठंडा रखने के लिए कोशिश कीजिए कि धूप में कम निकलें। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो नमक की कमी भी हो जाती है, तो इसलिए पानी के साथ में जब कभी थोड़ा सा चीनी और नमक मिलाकर आप पी लीजिए, ये आपको बहुत ही आराम देगा और ऊर्जा भी देगा। तो ये कुछ उपाय हैं, और इन दिनों में जो फल हैं, कुछ खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, आप जितना संभव हो सके, जो भी उपलब्ध हो सके अपनी क्षमता के अनुसार, तो आप उसका भी समय समय पर इस्तेमाल कीजिए। और हम आपको बता दें कि आज शुक्रवार है, और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, जो कहा गया है कि शुक्रवार को करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, और शनिवार को 70 किलोमीटर प्रति घंटे और रविवार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश या बिजली, गरज चमक, ये सब हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि 31 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन गर्मी रहेगी और उमस भी

सकती है। जब उमस होती है तब और ज्यादा परेशानी होती है, उमस में हमारे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो आप सावधान रहिए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता है। गर्मी आती है, मई जून के महीने आते हैं, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ तो गर्मी भी है, बारिश भी है, सर्दी भी है, सब है। तो बस थोड़ा सा हमें समय लगता है, हमारे शरीर को उसमें ढलने में समय लगता है। तो जो समय लगता है उसी समय में हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बस गर्मी

उसमें ढलने में समय लगता है, तो जो समय लगता है उसी समय में हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बस गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बस पानी पीते रहिए, तरल पेय पीते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे।

जी हाँ, गर्मी नुकसान करती है और ये हम सब जानते हैं, और गर्मी में क्या करना है ये भी हम सब समझते हैं, बस जरूरत है समय पर उपाय करने की। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जैसा कि प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि शुक्रवार को, आज और शनिवार को, रविवार को मौसम खराब हो सकता है। 100 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर और इससे भी अधिक तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तूफान भी आ सकता है और ओले बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में जब भी ये खराब मौसम हो तो आप में से कोई भी घर से बाहर ना निकले, और यदि आप घर से बाहर हैं तो छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान जरूर तय कर लें, और खासतौर से पक्के मकान का ही प्रयोग करें। पेड़ के नीचे नहीं छिपें, जंगली क्षेत्र है तो छोटे पेड़ों के नीचे छिपें, पैर के नीचे सूखी लकड़ी या फिर पत्ते रख लें, और जब तेज बारिश हो उस समय बर्तन धोने, नहाने या कपड़े धोने जैसा कोई काम न करें। पुराने मकान जो होते हैं, जर्जर मकान होते हैं, दीवारें होती हैं, वहां पर भी आप खड़े मत होइए, क्योंकि उनके भी तेज हवा से या फिर बारिश में गिरने की संभावना रहती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आसपास की सूचनाओं के साथ मैं हूं विशेष कुमार शर्मा। इनर रिंग रोड के किनारे विकसित की जा रही टाउनशिप ग्रेटर आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण अटलपुरम के रिक्त आवासीय भूखंडों की बुकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुकिंग शुरू करेगा। अटलपुरम के आवासीय भूखंडों की बुकिंग 15 जून तक चलेगी। ग्रेटर आगरा में आवासीय भूखंडों की बुकिंग 20 जून के बाद शुरू हो सकती है। ग्रेटर आगरा में 4353 आवासीय भूखंड हो सकते हैं। रायपुर और रहनकला में करीब 449 हेक्टेयर भूमि में विकसित की जा रही टाउनशिप ग्रेटर आगरा की भूमि की दरों को निर्धारित कर दिया गया है। शहरवासियों के साथ ही आसपास के जनपदों में रहने वालों को ग्रेटर आगरा में आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू होने का इंतजार है। इसकी वजह टाउनशिप की इनर रिंग रोड से यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से बेहतर कनेक्टिविटी होना है। ग्रेटर आगरा में देश की 10 नदियों के नाम पर टाउनशिप बनाई जाएगी, जिसमें सिंधुपुरम, गोमतीनगर, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, वेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम

कृष्णापुरम कावेरीपुरम शामिल हैं। यमुनापुरम पूरी तरह से व्यावसायिक और कावेरीपुरम रिक्रिएशनल है, इनमें आवासीय भूखंड उपलब्ध नहीं होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जहां कुछ विद्यार्थियों ने तकनीकी दिक्कतों पर सवाल उठाए हैं, वहीं शिक्षक और प्रधानाचार्य से अधिक पारदर्शी और समयबद्ध परिणाम देने वाली व्यवस्था बता रहे हैं। उनका कहना है कि डिजिटल प्रणाली के कारण परिणाम समय पर जारी हो सके, जबकि पुरानी ऑफलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक समय और मानवीय त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। सीबीएसई से जुड़े जानकारों के अनुसार इस वर्ष स्कैन कॉपी प्राप्त करने की सुविधा के अंतर्गत देशभर में 11 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। अकेले आगरा से करीब 5000 आवेदन दर्ज किए गए हैं। अधिक आवेदन के कारण शुरुआती दिनों में पोर्टल पर तकनीकी दबाव बढ़ा है, जिससे कई विद्यार्थियों को कॉपी डाउनलोड करने में परेशानी हुई। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया 29 मई से शुरू की जा रही है। सभी छात्रों को उनकी स्कैन कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। जिन विद्यार्थियों को अपने अंकों पर संदेह है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। भुगतान प्रक्रिया में आई शुरुआती दिक्कतों पर बोर्ड ने कहा है कि जिन छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया है या काटा गया है, उनकी राशि वापस की जाएगी। एतमादपुर की ऊसर भूमि के लिए प्रख्यात बिरूनी गांव का अब कायाकल्प हो रहा है। ये गांव आसपास के 50 गांव के लिए शिक्षा की नई उम्मीद बनेगा। यहां जनपद के पहले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये विद्यालय दिसंबर 2027 तक तैयार होगा। यहां 3 मंजिला भवन, मिड डे मील भवन और अत्याधुनिक लैब बनाई जाएगी। एक ही परिसर में 1500 छात्र छात्राओं को बाल वाटिका से इंटरमीडिएट तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी की नई परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। 28 मई को स्थगित की गई परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए एनटीए ने नए प्रवेश पत्र भी उपलब्ध करा दिए हैं। बकरीद के चलते 28 मई की दोनों शिफ्टों की परीक्षा स्थगित की गई थी। अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 31 मई को होगा, जबकि दूसरा चरण 6 और 7 जून को आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों में अब बच्चों में नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए दादा दादी और नाना नानी की अहम भूमिका तय की गई है। स्कूलों में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच अंतर पीढ़ीगत जुड़ा मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 31 मई को किया जाएगा। परीक्षा को जनपद में 27 केंद्रों पर कराई जाएगी। वहीं मंडल में 46 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीएड की परीक्षा के वक्त में बदलाव किया है। बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुक्रवार से नए समय पर होगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का समय जो पहले दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक था, उसे संशोधित कर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। यह नया समय 29 मई से आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। उनके अनुसार परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पहले की ही तरह रहेंगे। खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का निर्माण 31 जुलाई के बदले अब 30 नवंबर तक होगा। एनक्लेव का 65% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं खेरिया मोड़ से एयरपोर्ट तक रोड का विस्तार और सुंदरीकरण होगा। जिलाधिकारी ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएससी कृषि की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। बीएससी कृषि के सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने 15 कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा को 9 नोडल सेंटर बनाए हैं। आगरा कॉलेज द्वारा परीक्षा कराने में असमर्थता जताए जाने के बाद उत्तम कॉलेज को नोडल सेंटर बनाया गया।

0: है। बीएससी कृषि की परीक्षा के लिए आगरा में आरबीएस कॉलेज बिचपुरी, सेंट जॉन्स कॉलेज छलेसर कैंपस स्थित शारीरिक शिक्षा विभाग आरबीएस कॉलेज को नोडल सेंटर बनाया गया है। शुक्रवार से शुरू होने वाली परीक्षा 25 जून तक चलेगी। यात्रियों के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आईएसबीटी से बिजली घर चौराहा तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक की अप और डाउन लाइन में वर्तमान में मेट्रो का परीक्षण चल रहा है। मेट्रो को 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है। मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2026 में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही 1-2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र ने कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2026 में व्यवधान और तकनीकी कारणों से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। कांस्टेबल जीडी परीक्षा में प्रभावित कुल 4,162 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा 31 मई को कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं खोई हुई व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार सपना सोलंकी, निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा। सपना सोलंकी दिनांक 18 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता है। सपना सोलंकी की उम्र 40 वर्ष है, रंग गोरा है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, आंखों का रंग काला है, काले लंबे बाल हैं और घटना के समय सपना सोलंकी ने काले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहने हुई थी। सपना सोलंकी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार रोशनी, निवासी सुल्तानपुरा कैंट घोरी बस्ती, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा। रोशनी की उम्र लगभग 24 वर्ष है, कद 158 सेंटीमीटर। रोशनी दिनांक 28 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता है। रोशनी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर बाजार, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी ममता पुत्री श्री गरीब सिंह, निवासी कांकरपुरा महल बादशाही, थाना बमरौली कटारा, जनपद आगरा। कुमारी ममता दिनांक 22 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता है। ममता की उम्र 14 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, चेहरा गोल, रंग गेहुआ है। घटना के समय ममता ने बैंगनी रंग का कुर्ता और गुलाबी रंग का प्लाजो पहना हुआ था। ममता के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना बमरौली कटारा, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजे ही अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की।

है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है।

0: उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Santa's high-level committee on artificial demographic changes to also assess

0: अधिकारियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेरे सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात में

0: nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मॉनसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने DK शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। 8:45 और 30 सेकेंड हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने, कार्यक्रम गीतांजलि में। गीतांजलि कार्यक्रम की सदाबहार गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

यह है कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है शारदा, गायिका है लता मंगेशकर, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शारदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपको याद दिला दें आज शुक्रवार है। आपके खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे।

0: रात 10 बजे कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इंदीवर का लिखा हुआ है, बप्पी लहरी की तर्ज है। फिल्म का नाम है वक्त की आवाज। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: ए गुरु आ जाओ।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे इंदीवर की गीत रचना। धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम था वक्त की आवाज, जीने की राह। इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: जीने की राह फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने

0: पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
0: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: गीतांजलि कार्यक्रम में अब हम आपको भाई भाई फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम था भाई भाई।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, गायक कलाकार हैं येसुदास हेमलता और बानशी सेन गुप्ता।

फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का एक सदाबहार गीत खास आपके लिए। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म काला पत्थर के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 9:15 हुए हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर बीडीएम पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जाँच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जाँच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, DM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्यालय में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित UP के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे। गंगा स्नान को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोग

0: लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। आज शुक्रवार है। आज के दिन इस समय आप सुनते हैं गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। आइए सुनते हैं।

पाठशालाओं में हम पढ़ते हैं, वाचन मिथ्या बिना विचार। यह उक्ति शब्दशः सत्य है। हमें किताबें पढ़ने का शौक हो तो अच्छा ही कहा जाएगा। आलस्यवश जो पढ़ता नहीं, बाँचता नहीं, वह अवश्य मूढ़ माना जाएगा। पर जो खाली पढ़ा ही करता है, पढ़े हुए पर विचार नहीं करता, वह भी लगभग मूढ़ जैसा ही रहता है। इस पढ़ाई के बदले में कितने ही लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं, वह एक अलग बात है। निरावाचन एक प्रकार का रोग है। हम में से बहुतेरे निरी पढ़ाई करने वाले होते हैं। वे पढ़ते तो हैं पर गुनते नहीं, विचारते नहीं, उसमें छिपे गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। फलतः पढ़ी हुई चीज पर वे अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिए कि थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन उस पर विचार अवश्य करें, उस पर अमल अवश्य करें, या यूं समझें कि उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। अमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे त्याग दें, और जो ठीक जान पड़े, अच्छा लगे, उसे ग्रहण करके आगे बढ़ें। ऐसा करने वाला थोड़ी पढ़ाई से भी अपना काम चला सकता है, बहुत सा समय बचा लेता है, और वह मौलिक जिम्मेदारी उठाने के योग्य बन जाता है। जो विचार करना सीख लेता है उसको एक लाभ और भी होता है जो उल्लेखनीय है। पढ़ने को हमेशा नहीं मिल सका, देखने में आता है कि जिसे पढ़ने की आदत पड़ गई हो, उसे यदि पढ़ने को नहीं मिले तो वह परेशान सा हो उठता है। पर जिसे विचार करने की आदत पड़ जाए तो उसे कहीं कुछ लेने नहीं जाना पड़ता, और विचार पोथी को पुस्तक की भांति उसे कहीं खोजने की भी आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार करने वाले व्यक्ति को परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता। विचार करना सीखना, यह शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। सही गलत निठल्ले विचार तो बहुतेरे किया करते हैं, वह तो पागलपन है। कितने ही व्यक्ति विचारों के भंवर में पड़कर निराश हो जाते हैं और आत्मघात भी कर बैठते हैं। इस समय तो मेरा तात्पर्य पढ़े हुए पर विचार करने से है, उस पर गुनने से है, और आपने जो पढ़ा उस पर अमल करने और उसे व्यवहार में लाने से है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आज हमने एक भजन सुना या पढ़ा, उसका अपने मस्तिष्क में विचार करना, उसके अर्थ का मायने का मंथन करना, उसमें क्या रहस्य है, क्या भेद है, उससे मुझे क्या ग्रहण करना है, किस बात का त्याग करना है, इसकी छानबीन करना, इसे ढूंढना, उसमें दोष हो तो उन्हें देखना, उन्हें परखना, यदि उसका अर्थ समझ में नहीं आया हो तो उसे समझने का प्रयास करना, यही विचार पद्धति कही जाएगी। यह मैंने सादे से सादा दृष्टांत लिया है। इसमें से हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरा दृष्टांत घटित कर ले और आगे बढ़ता चले। ऐसा करने वाला व्यक्ति अंत में आनंद भोगेगा और जीवन में पूरी पढ़ाई का वाचन विचार के रूप में फलेगा। अब मिसाल के तौर पर एक पंक्ति को ले लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। हम देखेंगे कि यह पंक्ति तो एक है, लेकिन इसके अर्थ व्यापक और अनेक हैं। इसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि इस पंक्ति में से आप कौन सा उत्तम से उत्तम अर्थ ढूंढ पाते हैं और किस तरह अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं। अरे मुसाफिर उठ, सवेरा हुआ, अब रात कहाँ है जो तू सोता है। इतना समझकर जो उठकर मात्र बैठ जाता है, उसने पढ़ा तो सही पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया, क्योंकि वह तो सवेरे के समय उठकर ही अपने आप को कृतार्थ मान लेता है। पर जो विचार करना जानता है

वह तो अपने आप से पूछता है, मुसाफिर यानी कौन, सवेरा हुआ के माने क्या हुए, रात गई सोना क्या है। यों यद सोचने बैठ जाएं तो रोज एक पंक्ति के अनेक अर्थ निकाल लें और समझें कि मुसाफिर यानी जीव मात्र। मन में इसका मंथन करें और इसके गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न करें। जो अर्थ ठीक जान पड़े उसका जीवन में प्रयोग करें। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसे ईश्वर पर आस्था है उसके लिए सदा ही सवेरा है, रात के मानी आराम भी हो सकते हैं। और जो जरा भी लापरवाह रहता है उस पर यह पंक्ति घटित होती है। और आइए अब सुनते हैं बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी जी के विचारों और उनके प्रिय भजनों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

मन्ना डे के स्वर में आप सुन रहे थे पारंपरिक भजन। आइए सुनते हैं एक और भक्ति रचना, स्वर हरिओम शरण का है।

आप सुन रहे थे हरिओम श्रेणी के स्वर में भजन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उषा शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं उषा शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं एक और लोक रचना, कलाकार एक बार फिर उषा शर्मा।

0: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उषा शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुर सरिता।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: यह है सुर सरिता कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत। फिल्म का नाम है साजन, गायिका अलका याग्निक।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इससे पहले हमने आपको साजन फिल्म का गीत सुनवाया था अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल रहे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत कार्यक्रम है सुरसरिता और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। कार्यक्रम का अगला गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल, गीत आनंद बख्शी का है, फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज लता मंगेशकर की।

चमेली की शादी, इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। गीतकार थे अनजान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इससे पहले आपने क्रोधी फिल्म का गीत सुना था, उसे गाया था सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर सरिता कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राजेश रोशन की तर्ज पर मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ये आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग शुक्ल बिलावल में गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के एक बेहद सशक्त अभिनेता पंकज कपूर की। पंकज कपूर उन कलाकारों में से हैं जिनकी पहचान केवल लोकप्रियता से नहीं बल्कि अभिनय की गहराई से बनती है। उनका अभिनय शांत भी होता है, प्रभावशाली भी और बहुत स्वाभाविक भी। वे हर किरदार में ऐसी सच्चाई भर देते हैं कि दर्शक उसे लंबे समय तक याद रखता है। कभी वे गंभीर भूमिका में दिखाई देते हैं तो कभी व्यंग्य और हास्य के माध्यम से समाज का आईना दिखाते हैं। उनकी आवाज, ठहराव, चेहरे के भाव और संवाद अदायगी उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाते हैं। वे रंगमंच की परंपरा से आए कलाकार हैं, इसलिए उनके अभिनय में अनुशासन और संवेदना दोनों दिखाई देते हैं। आज का कार्यक्रम समर्पित है इसी बहुआयामी कलाकार की जीवन यात्रा और कला साधना को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन्हीं की एक फिल्म के इस गीत के साथ।

गाजे गाजे एक ढोल दो मीठे बोल नैन तराजू में दिल तोल पम पप द भंगड़ा पम पप द भंगड़ा मिठिया मिठिया गल्ला करिए आजा बैजा मेरे कोल जीवन जल में मदिरा घोल मैं बन जाऊं आग सपेरा झूम तू बन के नागिन ढोल दिल के सब

29 मई 1954 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि अभिनय, साहित्य और मंच की ओर थी। आगे चलकर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। यहीं से उनके अभिनय की मजबूत नींव तैयार हुई। रंगमंच ने उन्हें संवाद बोलने के साथ साथ मौन को भी अभिव्यक्ति बनाना सिखाया। उनकी निजी जिंदगी भी कला से जुड़ी रही है। उनका विवाह पहले अभिनेत्री नीलिमा अजीम से हुआ, जिनसे उनके पुत्र शाहिद कपूर हैं। बाद में उन्होंने अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से विवाह किया। सुप्रिया पाठक स्वयं रंगमंच, टीवी और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। इस तरह पंकज कपूर का जीवन और परिवार दोनों कला से गहराई से जुड़े रहे हैं।

पंकज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की और धीरे धीरे फिल्मों की ओर बढ़े। शुरुआती दौर में उन्होंने समानांतर और गंभीर सिनेमा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। करियर की सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में राख, एक डॉक्टर की मौत और मकबूल का विशेष स्थान है। फिल्म राख में इंस्पेक्टर पीके की भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। एक डॉक्टर की मौत में उन्होंने एक संघर्षशील वैज्ञानिक का किरदार निभाया जिसे बहुत ही सराहा गया। इस भूमिका में उन्होंने व्यवस्था की उपेक्षा, पीड़ा और ईमानदारी को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल में उनका अब्बा जी का किरदार यादगार बन गया। इस भूमिका में उनकी आंखों, आवाज और व्यक्तित्व का प्रभाव दर्शकों पर गहराई से पड़ा। मकबूल के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। इसके अलावा फाइंडिंग फैनी, मटरों की बिजली का मंडोला, शानदार और जर्सी जैसे फिल्मों में भी उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में आरोहण, गांधी, मंडी, जाने भी दो यारों, खामोश और चमेली की शादी भी रहीं।

दोस्तों, टेलीविजन की दुनिया में भी पंकज कपूर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। धारावाहिक करमचंद में उनका जासूस वाला किरदार घर घर में लोकप्रिय हुआ। हाथ में गाजर, तेज दिमाग और अलग अंदाज, करमचंद आज भी दर्शकों को याद है। इसके बाद ऑफिस ऑफिस में उन्होंने मुसद्दी लाल का किरदार निभाया। ये किरदार आम आदमी की परेशानी, सरकारी दफ्तरों की उलझन और व्यवस्था की विडंबना को दिखाता था। मुसद्दी लाल हंसाता भी था और सोचने पर मजबूर भी करता था। यही पंकज कपूर की खासियत है कि वे मनोरंजन के भीतर सामाजिक संदेश भी रख देते हैं। टेलीविजन पर उनका काम आज भी भारतीय दर्शकों की स्मृति में जीवित है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अच्छा अभिनय केवल फिल्मों तक सीमित नहीं होता, मंच, टीवी और सिनेमा, तीनों माध्यमों में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की।

दोस्तों, पंकज कपूर को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए, जो उनकी अभिनय क्षमता का बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड सहित कई अन्य सम्मान भी मिले। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि लेखक, निर्देशक और रंगकर्मी भी हैं। उनकी रचना दोपहरी को भी बहुत सराहा गया। ये उनकी संवेदनशील सोच और साहित्यिक रुचि को दर्शाती है। उन्होंने अभिनय को गरिमा, गहराई और संवेदना दी है। पंकज कपूर भारतीय अभिनय परंपरा के एक सम्मानित और प्रेरणादायी नाम है। इसी आदर के साथ हम उनके कला सफर को नमन करते हैं। और अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य को दीजिए इजाजत, कार्यक्रम आज के कलाकार को यहीं समाप्त करने की। और आप आनंद लीजिए पंकज कपूर की फिल्म मौसम के इस गीत का, जिसे उन्होंने ही निर्देशित किया है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गर्मी में संतुलित खान पान से स्वास्थ्य रक्षा, और अवसर है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा पाचन तंत्र केवल भोजन को पचाने का काम नहीं करता, बल्कि हमारी ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन की प्रसन्नता और पूरे स्वास्थ्य की नींव भी रखता है। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना, थकान और कई बार पेट से जुड़ी परेशानियां लेकर आता है। इस मौसम में किसी को भूख कम लगती है, किसी को एसिडिटी परेशान करती है, तो किसी को कब्ज, अपच, पेट में भारीपन और या कमजोरी महसूस होती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने खान पान को मौसम के अनुसार संतुलित रखें, क्योंकि गर्मी में स्वास्थ्य की रक्षा केवल दवाओं से नहीं बल्कि रोज की सही आदतों से होती है। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन, ताजा फल सब्जियां, साफ सफाई और थोड़ी सी नियमित चाल, ये सब मिलकर हमारे पाचन को मजबूत और शरीर को हल्का बनाए रखते हैं। तो आइए आज की इस स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें जीवन के बहाव, दिशा और किनारे तक पहुंचने का सुंदर भाव है।

दोस्तों, जैसे नाव को सही किनारे तक पहुंचने के लिए दिशा, धैर्य और संतुलन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही खान पान, पर्याप्त पानी और नियमित दिनचर्या की जरूरत होती है। गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी और जरूरी मिनरल्स लगातार निकलते रहते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसका असर केवल प्यास तक सीमित नहीं रहता। पानी की कमी से कब्ज, सिरदर्द, थकान, चक्कर, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए गर्मी में दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय समय समय पर पानी लेना शरीर के लिए ज्यादा सहज रहता है। सादा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, सौंफ का पानी और जीरा पानी, ये सभी गर्मी में शरीर को ठंडक देने और पाचन को सहारा देने वाले अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बार बार कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड मीठे पेय या बहुत अधिक बर्फ वाले ड्रिंक पेट को राहत देने के बजाय कई बार परेशानी बढ़ा देते हैं। ये पाचन को धीमा कर सकते हैं और गैस, जलन या भारीपन बढ़ा सकते हैं। इसलिए गर्मी की पहली सीख यही है, पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि पाचन, ऊर्जा और स्वास्थ्य को संभालने के लिए भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो रास्तों, मोड़ों और जीवन के चुनावों की बात करता है। और सच तो ये है कि स्वास्थ्य भी हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों से ही बनता है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ हमें एक रास्ता चुनने को देता है। ठीक वैसे ही हमारी थाली भी हर दिन हमें एक चुनाव देती है। हल्का और संतुलित भोजन चुनना है या फिर स्वाद के नाम पर शरीर पर बिना वजह का बोझ डालना है। गर्मी में तला भुना, बहुत मसालेदार, भारी और बहुत ज़्यादा मीठा भोजन पाचन को कमज़ोर कर सकता है। ऐसे भोजन से पेट में जलन, गैस, अपच, भारीपन, सुस्ती और नींद आने जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इसलिए गर्मी में भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को पोषण भी दे और पाचन पर बोझ भी ना डाले। इस मौसम में अपनी थाली को हल्का, ताज़ा और मौसमी रखना सबसे अच्छा उपाय है। दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, मूंग दाल, खिचड़ी, दलिया, सलाद, तरबूज, खरबूजा, पपीता और मौसमी फल जैसे विकल्प शरीर को पानी

0: फाइबर और जरूरी पोषक तत्व देते हैं। इसके लिए हम एक सरल उपाय अपना सकते हैं। भोजन जितना ताजा, हल्का और घर का बना होगा, पाचन उतना ही सहज रहेगा। इसलिए बासी भोजन, बहुत देर पहले खट्टे फल, खुले में रखा जूस या सड़क किनारे रखा सलाद लेने से बचना चाहिए। फल हमेशा अच्छी तरह धोकर और ताजा काटकर ही खाएं। गर्मी में खाने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना भी पाचन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दोस्तों, जब खान पान की बात चल ही रही है तो स्वाद और मस्ती का तड़का भी जरूरी है। आइए सुनते हैं एक चटपटा, लोकप्रिय और ऊर्जा से भरा गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक,

दोस्तों, हमारे देश में खाना पीना केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति, परंपरा, स्वाद और अपनापन भी है। कहीं पान की मिठास है, कहीं चाट की चटकार, कहीं घर की दाल रोटी का सुकून है, तो कहीं ठंडी छाछ का आराम। लेकिन गर्मी में स्वाद के साथ संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पान, मीठा, मसालेदार चाट, तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स या बाहर का खुला भोजन पेट को परेशान कर सकता है। खासकर गर्मी में बाहर का खुला भोजन संक्रमण, दस्त, गैस और एसिडिटी का कारण बन सकता है। अगर चटपटा खाने का मन करे तो घर पर बेहतर विकल्प बनाए जा सकते हैं, जैसे दही चना चाट, खीरा पुदीना रायता, भुना चना भुना मखाना, स्प्राउट्स चाट, नींबू पुदीना पानी या फिर हल्की फल चाट। उनमें भी स्वाद भी है और इनसे पाचन में भी कोई

दिक्कत नहीं आएगी। स्वाद छोड़ना जरूरी नहीं है, बस स्वाद को समझदारी से चुनना जरूरी है। अगर हम अपनी पसंदीदा चीजों को सही मात्रा और सही तरीके से लें तो खान पान आनंद भी देता है और स्वास्थ्य भी बनाए रखता है। यही संतुलित खान पान की असली पहचान है। स्वाद भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे और पाचन भी सहज रहे। और अब स्वाद की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक हल्के प्यारे और रोजमर्रा के अंदाज वाले गीत की ओर, जहाँ कॉफी है, साथ है और सादगी है।

दोस्तों, गर्मी में आइसक्रीम, ठंडे पेय, कुल्फी, मीठी चीज़ों का मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तेज़ धूप और गर्म हवा के बीच कुछ ठंडा खाने का ख्याल ही मन को राहत देता है। लेकिन हर ठंडी चीज़ शरीर के लिए ठंडक देने वाली हो, ये ज़रूरी नहीं। आइसक्रीम या ठंडी मिठाइयाँ कभी कभी सीमित मात्रा में ली जा सकती हैं, लेकिन अगर रोज़ रोज़ बहुत ठंडी, बहुत मीठी या बहुत क्रीमी चीज़ें ली जाएं, तो पाचन पर असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चीनी और क्रीम पेट में भारीपन, एसिडिटी, गैस या सुस्ती बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ठंडी चीज़ों से गले में खराश, खांसी या पेट फूलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आइसक्रीम का आनंद लें, लेकिन उसे आदत ना बनाएं और भोजन का विकल्प तो बिल्कुल ना बनाएं। इसके बेहतर विकल्प हो सकते हैं घर का ताज़ा दही, ठंडी छाछ, पुदीना छाछ, फ्रूट कर्ड, नारियल पानी, तरबूज, खरबूजा या कम चीनी वाला घर का बना शरबत। ये विकल्प शरीर को पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और हल्की ठंडक देते हैं। गर्मी में शरीर को ठंडक देने का मतलब सिर्फ ठंडी चीज़ें खाना नहीं, असली ठंडक आती है पर्याप्त पानी, हल्का भोजन, अच्छी नींद, शांत मन और संतुलित दिनचर्या से। कहते हैं चलते रहना ही जीवन है, और सच में पाचन को स्वस्थ रखने के लिए केवल सही भोजन ही नहीं, हल्की शारीरिक गतिविधि भी बहुत ज़रूरी है। नींद और तनाव भी पाचन से जुड़े हुए हैं। देर रात तक जागना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, पानी कम पीना और अनियमित भोजन करना, ये सब पेट पर असर डालते हैं। इसलिए पाचन स्वास्थ्य के लिए मन को शांत रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन को संतुलित रखना। गर्मी में पाचन को स्वस्थ रखने के लिए चार सरल बातें याद रखें: पर्याप्त पानी, हल्का और ताज़ा भोजन, साफ सफाई और रोज थोड़ी चाल। इसी आशा के साथ आज की बातों को देते हैं विराम। आज्ञा दीजिए अपने रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य को। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और कुछ प्यारे गीतों के साथ, पर अभी के लिए आप आनंद लीजिए इस गीत का।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को है। समय है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ। और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते

0: बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है,
1: जी
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई, वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है, गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते,
1: जी
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे की जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा

0: और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
0: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी

0: भालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत।

0: करते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
0: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश

0: को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षा गृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म जहर से आतिफ असलम की आवाज में। सईद कादरी के बोल थे मिथुन नरेश शर्मा की धुन। अगला गीत है फिल्म मर्डर 2 से मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह और साइन भट्ट की आवाजें हैं। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश है केके की आवाज में फिल्म जन्नत से। सईद कादरी की शब्द रचना है, प्रीतम की संगीत रचना।

बोल थे जावेद अख्तर के। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है एआर रहमान की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से। गीत है प्रशून जोशी का, संगीत एआर रहमान का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत

0: खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under-trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. An India-bound oil tanker, Nisos Keros, has successfully crossed the Strait of Hormuz and is en route to Vishakhapatnam with an expected arrival on the 3rd of next month. The Marshall Islands flagged vessel departed from Sharjah on the 21st of this month and was tracked in the northern Arabian Sea off India's west coast this morning. Iran's news agency reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy had facilitated the passage of 23 commercial vessels through the strait in 24 hours amid ongoing tensions over proposed transit fees by Tehran. Iran has proposed regulating maritime traffic via a new authority, while the United Nations maintains that imposing transit fees in international waters is illegal. The United States has called for free navigation through the strategic waterway. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru today and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made, asking him not to take any executive decisions during this period. Siddaramaiah had submitted his resignation letter at the Lok Bhavan yesterday. In Uttar Pradesh, 6 workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur. The bridge, which stretches from Morakandar to Kandor village, was being built over the Betwa River. The incident took place last night at around 2 a.m. when some workers were standing under a hydro machine amid rain. Rescue operations by NDRF and SDRF are underway. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal engaged with over 50 business and industry leaders at the roundtable hosted by the Consulate General of India in New York. in collaboration with the US-India Strategic Partnership Forum. In a social media post, Mr. Goyal said that during the roundtable, he highlighted India's strong growth story, reform-driven business environment, and expanding opportunities for global investors under the leadership

0: leadership of Prime Minister Narendra Modi. He further discussed ways to deepen India-US trade, investment, innovation and supply chain partnerships for shared prosperity. The Intermeteorological Department, IMD, has predicted below normal rainfall over the country during the southwest monsoon season between June and September. Briefing the media on the second stage long-range forecast for monsoon season 2026 in New Delhi today, Secretary of the Ministry of Earth Sciences Dr. M. Ravichandran said the southwest monsoon seasonal rainfall over the country is likely to be 90% of the long period on average, with a model error of plus minus 4%. He informed that during the season, rainfall is most likely to be normal over northeast India and below normal over central, southern peninsula and northwest India. He said El Nino conditions are very likely to develop during the monsoon season. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mohapatra, said the average rainfall of the country during the month of June is most likely to be below normal.
1: We are expecting that weak El Nino condition will develop in the month of June itself, and in July and August, weak to moderate El Nino condition will prevail, and September, moderate to strong, then towards end of September it may be strong. Otherwise, the most part of the monsoon, it will go as weak to moderate El Nino conditions, but post-monsoon season will have the strong El Nino conditions.
0: Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex lost 69 points to 75,799, while the Nifty 50 dipped 54 points to 23,854 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: Now, hey, Elaqai Khabri, Deeba Hashmi se. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
3: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
2: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़राई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं, 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
2: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाकई CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि

0: की सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेरे तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। समय है हमारी बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार का।

नमस्कार बहनों, आपका कार्यक्रम घर संसार के हाजिर हूँ मैं अपनी महिला पर। बहनों, हमारे देश की अलौकिक धनी ऋषि मुनियों महापुरुषों ने जन्म और काल में उन्होंने जो भी बातें और शिक्षाएं हमें प्रदान की वो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे स्वस्थ दिनचर्या क्या होती है, शारीरिक शुद्धि व स्वच्छता क्या होती है, इनसे संबंधित नियमों का पालन हमें कैसे करना है, ये सभी शिक्षाएं युवाओं कुछ छोटे मोटे के साथ इन्हें मनुष्य ने अपने जीवन में अपनाया है। बहनों, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ पर्यावरण भी चाहिए होता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अपनी शारीरिक साफ सफाई, घर की साफ सफाई का ज्यादा लेकिन अपने घर के आसपास सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने की जब बारी आती है तो वही लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। जबकि समझने वाली बात यह है कि जब बाहरी वातावरण दूषित या गंदा होगा तो घर से बाहर महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके इस कथन को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता

0: जिसे स्वच्छता ही सेवा है नाम दिया गया। तो स्वच्छता बनाए रखने का कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि यह समाज के हर एक व्यक्ति घरों, कॉलोनी, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजों, कार्यालयों से करनी है। बहनों, आजकल हमारे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ऐसे में हम अपने घर के आसपास रहने वाले बच्चों के कॉलोनी के पार्क को साफ करने का भी चला सकते हैं। घर के आसपास की सड़कों पर कूड़ेदान पौधे लगाना, छोटे छोटे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी इस अभियान में भाग लेकर स्वच्छता की आदत को आगे बढ़ाने का संकल्प अवश्य, क्योंकि बहनों इस सत्य है कि स्वच्छता ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का मूल मंत्र है।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: ये कवि कवयित्री की ही योग्यता, उनके विविध रंगों को वह अपने अभी आनंद लेते हैं सीटी गोस्वामी के इस का प्यार।
3: प्रस्तुत है प्रथम कविता जिंदगी। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है, कभी मखमली बिस्तर तो कभी टूटी खाट देती है। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है, कभी मखमली बिस्तर तो कभी टूटी खाट देती है। जिस पल को हम सोच भी नहीं पाते, एक पल में वो हमें उस पल में लपेट देती है। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है, एक लम्हे में देती है ढेरों खुशी, दूसरे ही लम्हात आफतों की आहट देती है। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है। हमारी क्या बिसात जो कर सकें जिंदगी में कुछ दखलंदाजी, ये जीवन को सुख और दुख के दो पड़ों में बांट देती है। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है। कभी कभी कटती है रात आँखों में, तो कभी ख्वाबों में चैन से सोने के खूबसूरत से ख्वाब देती है। जिंदगी भी कैसे कैसे ठाट देती है, कभी मखमली बिस्तर तो कभी टूटी खाट देती है, प्रस्तुत है कविता खुशनुमा पल। जिंदगी को हम कहाँ जीते हैं, ये तो खुद को खुद जिए जाती है। रास्ता नहीं मिलता जहाँ जहाँ हमको, ये खुद अपना रास्ता बनाती है। हम क्या आजमाएंगे किसी को, ये हर पले हमें आजमाती है। जी चाहता है कभी मिल जाए मुझे सुकून, तब तलक ये मेरे सामने नया दर्द ले आती है। देकर मुझे दर्द ये जिंदगी मुस्काती है। जिंदगी को हम कहाँ जीते हैं, ये तो खुद को खुद ही जिए जाती है। मैं चुनता हूँ कलियों की सेज और ये कांटों पर मुझे सुलाती है। ऐ मेरी जिंदगी, तुझे मेरी जिंदगी बुलाती है। जिंदगी को हम कहाँ जीते हैं, ये तो खुद को खुद जिए जाती है। मत करना मोहब्बत यारो, कुछ पल की हंसी देकर ये सारी उम्र रुलाती है, जिंदगी को हम कहाँ जीते हैं, ये तो खुद को जिए जाती है। रास्ता नहीं मिलता जहाँ जहाँ हमको, ये खुद अपना रास्ता बनाती है। प्रस्तुत है कविता कोई और है। मेरे हाथों में खाली डोर है, ना पतंग है ना पहले सा शोर है। खाली पड़ा है आसमां, कैसा ये तन्हाई का दौर है। मेरे हाथों में खाली डोर है। हवाओं ने रुख बदल दिया, कैसा अजब ये जीवन का मोड़ है। मेरे हाथों में खाली डोर है। आंखें वही दीठियां वही पुराना कोर है। मेरी हाथों में खाली डोर है। मंजिल नहीं बदली बस राही बदल गए। पहले हम

0: थे मगर पहले, हम थे मगर सुना है हमने, अब उनके साथ वहाँ रहता कोई और है। मेरे हाथों में खाली डोर है, ना पतंग है ना पहले सा शोर है, ना पतंग है ना पहले सा शोर है। अगली प्रस्तुति है कवि। क्योंकि मैं कवि हूँ, मुझे मर्यादा में बोलना चाहिए। मेरे कांधे पर जिम्मेदारी है, मेरे कांधे पर जिम्मेदारी है समाज को आईना दिखाने की। क्योंकि मैं कवि हूँ, कवि सूरज को ताप देता है, कवि सूरज को ताप देता है, गूंगे समाज को आवाज देता है। किंतु मुझको ये आभास होना चाहिए क्योंकि मैं कवि हूँ। वर्षों से हृदय के उद्गारों का काम किया है मेरे द्वारा, वर्षों से हृदय के उद्गारों का काम किया गया है मेरे द्वारा। मैंने एक अथाह सागर को गागर में भी भरा है, मैंने एक अथाह सागर को गागर में भी भरा है, और मैंने ही इस विश्व का हर एक हीरा सही जगह पर जड़ा है। जब आवश्यकता आन पड़ी तो मैंने आलोचकों पर कड़ा प्रहार किया है, किंतु मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्यादाओं को तोड़ दूं। क्योंकि मैं कवि हूँ, मुझे मर्यादा में बोलना चाहिए। अगली प्रस्तुति इश्क के उल्फत। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे, इतना प्यार दिया उसने मुझे, मुझसे ही लुटा गए मुझे। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे, इतना प्यार दिया उसने कि मुझे मुझसे ही लुटा गए मुझे। मैं भूल ना जाऊं कहीं रास्ता अंधेरों में, उजालों के खातिर जब कुछ न मिला तो कभी बुझ ना सकूं, कुछ इस तरह अपने इश्क में चला गए मुझे। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे। मैं तो वैसे भी कुछ न था, मुझ खाक को राख में मिलाकर और भी राख बना गए मुझे। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे। आकर मेरी राख को हथेलियों में भरकर वो खूब रोए, लगा लिया राख को खुद पर, और इस तरह वो अपने सीने से लगा गए मुझे। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे। सो गया था मैं चैन से, वो फिर से जगा गए मुझे। लाख कोशिशों के बाद संभाला था मैंने खुद को, मगर एक ही पल में वो सता गए मुझे। झंझटों के शहर में वो बसा गए मुझे।
1: बहनों, अभी आपने सुना स्वीटी गोस्वामी का काव्य पाठ। प्रकृति ने हमें अनगिनत उपहार दिए हैं, जिनमें प्रकृति के इस खजाने का एक अद्भुत उपहार है प्राकृतिक चिकित्सा, जो मानव स्वास्थ्य हेतु अत्यंत उपयोगी है। तो आइए बहनों, सुनते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी जानकारी अपने कार्यक्रम सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के जरिए, जिसमें हमने की बातचीत एक नेचुरोपैथ कुलदीप भवानी से। कुलदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: आचार्य कुलदीप, जैसा कि आप नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों का उपचार करते हैं, तो हम आपसे प्राकृतिक चिकित्सा को संक्षेप में जानना चाहेंगे।
2: हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकृति की और प्रकृति से पैदा हुई प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर के लिए ही सिर्फ फायदेमंद नहीं है, ये हम मानवों के व्यवहार के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है। हम लोग ही सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सभी प्रकार के रोग और दोषों को दूर करने की क्षमता प्राकृतिक चिकित्सा में है। प्रकृति उन्हें सिखाती है कि जब आपका पेट भर जाए तो खाना नहीं है, जब प्रकृति कहती है प्यास लगे तो पानी पी लेना है। जीवन को जीने के लिए जो शिक्षा होती है उसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं।
1: खासकर गर्मी के मौसम की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी और महत्वपूर्ण है?
2: प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है

0: नॉलेज। हम जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं, हमें वहां के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को रखने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सर्दियों में अगर हम हैं, तो हमें पता होता है कि हमें गर्म कपड़े पहनने हैं। जब बरसात में होते हैं, तो हमें पता होता है कि घर से जब भी निकलें तो छाता लेकर निकलें। गर्मियों में हमें पता होता है कि गर्मियों में हमें एसी चालू कर लेने हैं, कूलर ठीक करा लेने हैं, पंखा सही टेम्परेचर पे सही स्पीड में चलते रहने देना है। ये हो गई नॉर्मल सोसाइटी की बातें। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा हमें ज्ञान कैसे देती है, और प्राकृतिक चिकित्सा को जब हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो उससे हमें स्वास्थ्य लाभ कैसे मिल सकते हैं। गर्मियों के दिनों में विशेषकर हमें ये समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से जब बाहर का वातावरण अगर गर्म है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा मानव शरीर जो है वो भीतर से ठंडक महसूस करे। ये जो नेचर के द्वारा बनाई गई ये जो मशीन है, ये बहुत अद्भुत है। इस सर्दियों में गर्म रहने की क्षमता इसके पास है, गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने की भी क्षमता इसके पास है, लेकिन उस क्षमता को हमने गलत व्यवहार, गलत जीवन शैली से खराब कर लिया। तो वो दोबारा कैसे वापस आए हमारे पास, तो उसके कुछ नियम हैं। मौसम के अनुसार खाइए, मौसम के अनुसार रहिए, मौसम के अनुसार जागिए, मौसम के अनुसार सोइए। गर्मियों में छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। आप छाछ को जितना पतला करके पिएंगे, उसके अंदर डालिए ना आपके पास जो आपकी दादी नानी के नुस्खे हैं, या फिर आपको भी उस चीजों का पता है कि हींग, जीरा, पुदीना, इन सबको मिलाएं, स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और दोपहर के समय में छाछ पी जाएं। छाछ अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। आम का पना आप पिए, गोंद कतीरा आप लें, और उसके अलावा अधिक से अधिक गर्मियों में पानी का सेवन रखें, जिससे कि आपका शरीर हाइड्रेट रहे, भीतर से पानी की पूर्ति होती रहे।
1: आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस है, तो प्राकृतिक रूप से पाचन को बेहतर बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं?
0: पाचन दिवस पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व को ये बात पता है, और नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, कि अगर आपका पाचन ठीक है तो आप समझे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। अगर पाचन आपका शरीर नहीं कर पा रहा है, आपके द्वारा खाई गई किसी भी चीज को अगर शरीर पचा नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो शरीर को लग ही नहीं रहा। पाचन का अर्थ होता है कि आपने जो खाया, जो आप सोच कर खा रहे हैं कि ये मैं जो विशेष चीज खा रहा हूं, चाहे वो औषधि है, चाहे वो कोई आहार है या फिर कोई द्रव्य है, तो आप उसको शरीर में इसलिए जाने दे रहे हैं कि ये शरीर में जाकर मेरे पचे। इसका पाचन अच्छे से होगा तो ये मेरे रोम रोम में जाके लगेगा। पाचन से पहले आता है कि आप अपने मुंह में भोजन को चबाते कितना है, और ये बात सभी को पता है कि ज्यादा चबाओ, लेकिन जानकारी होना और उस काम को करना, दोनों में हमेशा हमने अंतर बनाए रखा है। इस चीज को समझिए कि जितने मुंह में दांत हैं आपके, उतनी बार तो कम से कम चबाना है। कम से कम गिन लीजिए अपने मुंह के दांतों को, उतना तो कम से कम चबाइए, और उसके बाद आप उसे निगलिए। दोपहर का भोजन आप करें, उससे पहले सलाद खाएं, और उसके भोजन के उपरांत कभी भी तुरंत पानी न पिए। अगर आपको लग रहा है कि मुंह को साफ करना है, तो आप एक सिप ले सकते हैं, घूंट ले सकते हैं, मुंह को साफ करके उस पानी को अंदर ले जाए, अन्न का ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद शाम के समय में आप सूप ले सकते हैं या दलिया खिचड़ी ले सकते हैं। उस दलिया खिचड़ी के बाद आप इस चीज का ध्यान लेंगे, फिर चुपचाप आप सो जाइए। सुबह जल्दी उठें, दोपहर में अगर आराम करने की जरूरत है तो दोपहर को आराम कर लें थोड़ा सा, और रात को जल्दी सोने का प्रयास करें।
1: प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी जो भी जानकारी आज आपने हमसे साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

बहनों, आज महिलाएं अपने बुलंद हौसलों और अपनी रचनात्मकता से न सिर्फ घर परिवार संभाल रही हैं, बल्कि खुद को आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत भी कर रही हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप्स बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहे हैं। बहनों, स्टार्टअप एक ऐसी नई और इनोवेटिव

कंपनी होती है जो किसी विशिष्ट समस्या का समाधान तकनीक के माध्यम से प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से विकास करना और बाजार की मांग को पूरा करना है। स्टार्टअप आमतौर पर उच्च जोखिम, सीमित आय के साथ शुरू होते हैं। फंडिंग के लिए कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। बहनों, ये बड़े हर्ष और आश्चर्य की बात है कि हमारा देश पिछले 10 वर्षों में विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप के माध्यम से आज भारतीय नारी भी खुद की एक अलग पहचान बना रही है और देश के लगभग 76,000 से भी अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व कर रही है। देश की अनगिनत महिलाओं ने फैशन, तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में नई मिसालें कायम की हैं। बहनों, महिला स्टार्टअप न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहनों, अगर आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं तो अपने लिए इनोवेटिव स्टार्टअप का चयन कर सकती हैं। बहनों, भारतीय नारी ने तो सदैव ही जीवन की विषम परिस्थितियों का बड़े ही साहस के साथ सामना किया है और अपने अस्तित्व को भी बचाए रखा है। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये गीत।

बहनों, मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, अपनी त्वचा की देखभाल करना खासकर हम महिलाओं की प्राथमिकता है। दिनों दिन बढ़ता हुआ तापमान और झुलसा देने वाली गर्मी कभी हमारी त्वचा को ऑयली बना देती है, तो कभी पिंपल बनकर हमें सताती है, कभी रैशेज तो कभी टैनिंग, और न जाने क्या क्या दिक्कतें होने लग जाती हैं। बहनों, ऐसे में सिंपल सी आइस थेरेपी अपनाने से हमारी त्वचा की बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। वैसे आइस थेरेपी की सलाह तो अक्सर सौंदर्य विशेषज्ञ भी देते हैं। बहनों, गर्मियों में चेहरे पर बर्फ़ लगाना यानी कि चेहरे को पोषण देना। जी हाँ, यकीन मानिए बहनों, त्वचा पर बर्फ़ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और रंगत में भी सुधार आता है। बहनों, जब कभी आपको तेज़ धूप, धूल या प्रदूषण में समय बिताने के बाद त्वचा में खुजली या जलन महसूस हो, तो आइस थेरेपी एक प्रभावी उपाय की तरह काम करती है। बर्फ लगाने से त्वचा पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल भी कम होने लगता है और बढ़े हुए रोम छिद्रों को ये बर्फ श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से मुहासे कम होते हैं। बहनों, अगर आपकी आंखें सूजी, थकी हुई हों यानी कि पफी हो रही हों, तो आंखों के आसपास बर्फ रगड़ने से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। बर्फ लगाने के फायदे तो हमने जान लिए बहनों, लेकिन आइस थेरेपी का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कॉटन का कपड़ा या फिर रूमाल लें, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर इसे पैक कर लें। अब इसे आइस बैग की तरह इस्तेमाल करें। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में चेहरे की मसाज करें। ध्यान रहे बहनों, इसे एक दिन में एक बार ही करना है। बहनों, ये सिंपल सी होम बेस्ड आइस थेरेपी अपनाइए और अपनी त्वचा को निखारिए।

बहनों, गर्मियों में आम का सेवन तो हर एक घर में किया जाता है। कच्चे आम से आम पन्ना और अचार बनाने के अलावा स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जा सकती है। बहनों, आज की रेसिपी का नाम है आम और नारियल की चटनी। बहनों, आम और नारियल की चटनी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो इस प्रकार है। कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, कटा हुआ कच्चा आम लगभग आधा कप, 2 हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार और पानी आवश्यकता अनुसार। और हाँ बहनों, तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच सरसों, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, 10

हुआ कच्चा आम लगभग आधा कप, दो हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार और पानी आवश्यकता अनुसार। और हाँ बहनों, तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच सरसों, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, 10 करी पत्ते, बारीक कटे हुए आम गार्निशिंग के लिए। मैंने सबसे पहले ग्राइंडर में आम के टुकड़े, कद्दूकस किया हुआ नारियल, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिए। अब इस तैयार मिश्रण को एक बोल में निकाल लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाइए। पैन में तेल गरम करिए और उसमें सरसों डालिए, और जब ये सरसों चटकने लगे तो तेल में करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर गैस को ऑफ कर दीजिए। तड़के को तैयार चटनी में डालकर मिलाइए और सर्व कीजिए। बहनों, समय हो चुका है अब आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए कार्यक्रम घर संसार की सभी श्रोता बहनों को उनकी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और अब वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं परवेज मेहंदी की आवाज़ में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गजल।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze in women's 100 meter at under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास है।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा।

0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था।

0: भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज की पहली प्रस्तुति है पंडित निखिल बनर्जी का मांड धुन में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का धुन मांड में सितार वादन। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित मोहित कुमार का धुन पहाड़ी में गिटार वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित मोहित कुमार का धुन पहाड़ी में गिटार वादन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

अभी आप सुन रहे थे पंडित मोहित कुमार का धुन पहाड़ी में गिटार वादन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

पहला गीत था फिल्म 16 साल से हेमंत कुमार की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एसडी बर्मन की धुन। अगला गीत है फिल्म प्यासा से, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर हैं, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत रचना एसडी बर्मन की।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म वो कौन थी से। मदन मोहन की धुन पर बोल थे राजा मेहंदी अली खान के। इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का। इसमें आज की पहली पेशकश है मकाला, जिसका उन्वान है अदब जबान और मुआशरा। मकाला निगार है जनाब अली मोहम्मद जौहर।
1: अदब आदमी को इंसान बनाता है, अदब हमें मुसर्रत भी दे

देखता है और बसीरत भी। अदब हमारे जज्बात की तस्कीन के साथ उनकी तदहीर भी करता है। अदब हमारी जिंदगी का तर्जुमान भी है और नक्काद भी। अदब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है तो अदीब सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा आलमबरदार। अदब का ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है और फ़नून लतीफ़ा से इंसान को हमेशा दिलचस्पी रही है, इसलिए इंसानों की अक्सरियत का अदब दोस्त होना फितरी बात है। इंसानी जज्बात वो एहसासात की अक्कासी अदब में होती है और इस तरह अदब हमारे जज्बों को ज़बान अता करता है। अदब हमें एक और ज़िंदगी जीने और उस हकीकी दुनिया से मावरा एक ऐसी मुतवाजी दुनिया में पनाह लेने का मौका फराहम करता है जहाँ नमरूद वक्त और शद्दाद ज़माना का कोई हुक्म नाफिज नहीं होता। खालिक कायनात ने हमारे अपनी बेहतरीन तखलीक इंसान में खलाकियत का जौहर भी शामिल कर दिया है। यही वजह है कि इंसान इब्तदाए आफरीनश से आज तक अर्ज हुनर के नए नए सांचे तैयार करता रहा है और आइंदा भी तैयार करता रहेगा। फितरत अगर पहली फनकार है तो ये दुनिया फितरत की शाहकार तखलीक है। फितरत की पैरवी या नकाली रोज अव्वल से इंसान का महबूब मशगला रहा है और इसी रुझान ने दुनिया के हुस्न में इजाफा किया है। इस हसीन और दिलचस्प इजाफे का एक नमूना इकबाल की नज्म मुहावरा माबैन खुदा और वो इंसान में इंसान के हस्ब ज़ैल जवाब में पेश किया गया है। तू शब आफरीदी चराग आफरीदम सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम बयाबान कोहसार व राग आफरीदी खयाबान गुलजार व बाग आफरीदम मन आनम के असंग आयना साजम मन आनम के अजहर नोशीना साजम। तूने रात पैदा की मैंने चिराग पैदा किया, तूने मिट्टी पैदा की मैंने उससे खूबसूरत प्याले बनाए, तूने बयाबान कोसार और जंगल पैदा किए मैंने खयाबान और गुलजार और बाग पैदा किए। मैं वो हूँ जो पत्थर से आयना पैदा करता हूँ, मैं वो हूँ जो जहर से नोशीना यानी तिरयाक जहर तैयार करता हूँ। इंसानी ज़हन व क़ल्ब में पिन्हा इसी तख्लीकी जौहर के उम्दा इस्तेमाल का ये तकाजा होता है कि हम फ़नून लतीफ़ा के बेशकीमत सरमाया यानी अदब व शायरी को पढ़ें, इससे महजूज हों, अपने ज़हन व फ़िक्र में, अपने तर्ज गुफ्तार में, अपनी तहरीरों में निखार पैदा करें, अपने समाजी रवैयों में तब्दीली और बेहतरी लाएँ। अदब कोई मुबल्लिग या मुसले नहीं होता, लेकिन इसमें पेश करदा आला व अरफा ख्यालात व जज्बात तरबियत याफ्ता कारी पर गहरा असर छोड़ते ही हैं। नया अदब नए आलमी तनाजुर से रोशनास कराता है। अद हाजिर की कुलफतें, तन्हाइयां, तेज रफ्तार जिंदगी, कंप्यूटराना मिजाज, अकदार की शिकस्त रेख्त, खुद गर्जी, बेहिसी और बेदर्दी की सारी दास्तान और रुदाद हमारे अदबी सरमाया का भरपूर हिस्सा है। नए सार्फी निज़ाम ने इंसान को बाजार में फरोख्त होने वाली एक शय बना दिया है, इसलिए नए अदब के मुताले में हमारे दौर के ये सारे एहसासात अपना अक्स दिखा रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस अहद में ये जाहिर करने और इस ख्याल को हावी करने की कोशिश की जाती है कि अदब पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत बाकी नहीं रही, लेकिन ये फरेब नज़र है। हकीकत यह है कि जब तक ये दुनिया कायम है अदब की मानवियत कायम रहेगी, और जब तक अदब की मानवियत कायम रहेगी अदब के पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। अदब का तर्ज गुफ्तार साइंसदानों की सोच और तर्ज इजहार से मुख्तलिफ होता है। मसलन गुरबत व इफलास से तंग आकर एक गैरतमंद शख्स जहर खाकर खुदकुशी कर लेता है तो साइंस ये रिपोर्ट पेश करती है कि उस शख्स की मौत जहर खुरानी से हुई है। इसी वाकये पर एक अदीब का फैसला इसके बरक्स होता है। वो उसकी मौत का सबब जहर के बजाय उसकी गरीबी और मुफलिसी बताता है। साइंसी फैसले बसारत पर मबनी होते हैं तो अदबी फैसले बसीरत पर। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि बसारत के मुकाबले बसीरत का मुकाम बुलंद है, यानी साहब बसीरत अरबाब बसारत से ज्यादा बाखबर होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अदब खा किसी भी जमाने का रहा हो अपने माहौल और माशरे का आयना दाज जरूर रहा है, लिहाजा माशे की इज्तिमाई तर्ज फिक्र का अदब के आयने में मुनाकिस होना फितरी सी बात है। वक्त की तब्दीली के साथ कदरें बनती बिगड़ती रहती हैं, छोटी बड़ी कदरें अपनी कैफियत व कमियत के एतबार से अदब पर असरअंदाज होती रहती हैं। इसी तरह कदरों की तायुन व तबलीग में अदब की कार फरमाई भी जारी रहती है, लेकिन यह अमल इतने गैर महसूस तरीके से होता है कि हम बमुश्किल ही उसका इदराक

कर पाते हैं। इन हकायक की रोशनी में अदब के सामाजिक किरदार से मुतालिक शकुक व शुबहात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अदब की अपनी कुछ कदरें भी होती हैं जो अदीब से एक मखसूस दयानत की मुतकाजी होती हैं। यही सबब है कि अदीब को माशरे का जमीर कहा गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीर है क्या और माशे से उसका क्या ताल्लुक है। ज़मीर खैर व शर के मरवीजा तसव्वुरात से पैदा होता है और खैर व शर के ये तसव्वुरात माशरे के बतन से ही पैदा होते हैं। फ़र्द कायनात का और छोटे पैमाने पर समाज का एक नामियाती हिस्सा है, इसलिए हमा वक्त अपनी आज़ादी के लिए कोशा रहता है, लेकिन एक गैर महसूस ताकत उसे अपने असल की तरफ खींचती भी रहती है। फ़र्द अपनी तमाम तर आज़ादी के बावजूद ज़ाती तौर पर कुछ पाबंदियां भी तस्लीम करता है। ये कश्मकश जब ठहराव की शक्ल अख्तियार करती है तो ज़मीर का हैवला तैयार होता है। ये फर्दियत और कुलियत के दरमियान एक मुआहदा है। इंसान का ज़मीर उस मुआहदे की पासदारी बड़ी दयानत और सच्चाई के साथ करता है। खुद एहतसाबी का अमल ज़मीर की कारफरमाई का वाज़ह सबूत है। ज़मीर इंसान के अफकार व अमाल का मुहतसिब भी है और मुहाफिज भी। फनकार अपने फनी तजर्बे माशरे से हासिल करता है और उसे अपने तख्लीकी शोर के जरिया तहजीब और तरफ़ो के मनाजिल से गुजार कर एक मखसूस कालिब अता करता है। फनी या तख्लीकी तजर्बा अपने सोशल फ्रेम वर्क में तरसील की कुवतों से बहरा अंदोज होता है। उर्दू अदब में मौजू और हैत के दोनों एतबार से तजर्बे होते रहते हैं। ये तजर्बे अमूमन इनफरादी सतह पर हुआ करते हैं और अरसे तक अपनी हैसियत मनवाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। उन्हें मकबूलियत उसी वक्त हासिल होती है जब ये तजर्बे समाजी अकदार से बड़े पैमाने पर मुताबकत पैदा कर लेते हैं। इस तरह अदबी रिवायत जहूर में आती है। तजर्बे रिवायत से इन्हराब की शक्ल में जाहिर होते हैं, बाद अज़ां खुद रिवायत की शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हर नए तजर्बे या रिवायत से इन्हराब की सारी काविशें बराबर नहीं होती। इनफरादी कदरें और इनफरादी सतह पर वकू पजीर होने वाला तजर्बा कभी कभी आम समाजी सतह से खासा बुलंद हुआ करता है और अपनी ईजाबी कुवतों की मदद से समाज को बुलंदतर करते हुए मुताबकत की सूरत अख्तियार कर लेता है। अदब का तारीखी मुताला क्रोनोलॉजिकल स्टडी हमें ऐसे बेशुमार तजर्बों से रूशनास कराता है जो अपने मनफी रुझानात की वजह से फल फूल नहीं सके। हर जबान अपनी जगह एक कल्चर भी है। अपने तहजीब व तमद्दुन की पासदारी और उसकी हिफाजत करने वालों को ये फर्ज है कि वो अपनी जबान की हिफाजत करें। उर्दू जबान हिंदू मुस्लिम सकाफत का एक अजीम सरमाया है। इसने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। ये उर्दू जबान ही थी कि जिसके जरिए आज़ादी के रहनुमाओं सियासी कायदीन और दानिश्वरों ने अपने ख्यालात अंग्रेजी से नाबलद हिंदुस्तानी अवाम के जहनों दिल तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। इनकलाब जिंदाबाद की सदाए बाजगश्त आज भी हिमालय से राजकुमारी तक सुनी जा सकती है, लेकिन ये इनकलाब परवर और ये इनकलाब आफरी जबान इनकलाब रूनमा होने के बाद सियासी रेशा दवानियों का निशाना बनी। जबानें अपनी बका और इर्तका के लिए किसी भी सरपरस्ती की मोहताज नहीं होती, बशर्ते कि उसका रिश्ता अवाम से उस्तवार रहे। उर्दू की साम मकबूलियत और सख्त जानी ने आखिरकार अपना लोहा मनवा ही लिया। आज के अदबी मंजरनामे पर नजर डालें तो आपको रिवायत से इन्हराफ या नए तजर्बे की बहुत सी काविशें अपने बका के लिए सरगर्म और अपने वजूद के असबात के लिए सरमारती नजर आएंगी। ऐसे तजर्बे दर हकीकत उस जहनी कश्मकश का नतीजा हैं जिन्हें फर्द के अपने माशे से ताल्लुक हयात व कायनात से मुतालिक रवैये और नजरियात का जायदा कहा जा सकता है। एहसास शिकस्त जहनी परागंदगी या जहनी इंतशार के इनेकासात को रद्द अमल का नाम दिया जा सकता है। अदबी तजर्बा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन तजर्बों में आफाकियत नहीं होती, लिहाजा माशरे में इनका वजूद मशकूक और मुश्तवा रहता है। चुनांचे सार्फियत ज़दा माहौल गुमराही और हट धर्मी के इस खौफनाक दौर में जहां मजहब व इकदार के सारे हवाले बेमानी होते जा रहे हैं, इंसानी रिश्तों की बहाली और इंसानी कदरों के तहफ्फुज़ व बका के लिए अगर किसी तबके का किरदार बामानी नजर आता है तो वो शायर और अदीब का तबका है। आज मुतमद्दिन दुनिया की तरक्की माकूस ने यह साबित

0: कर दिया है कि हम आज भी दौरे नाशायस्तगी में जी रहे हैं। अगर ये सच है तो यही ज़माना सही मानों में शेर व अदब के फ़रोग का ज़माना है, क्योंकि अदीब माशरे का ज़मीर भी होता है और रूह असर का तर्जमान भी। लिहाजा इस पूरा आशोब दौर के अखलाकी और तमदनी बहरान से बाहर निकलने के लिए कोई राह कहीं खुलती है तो वो शेर व अदब की दुनिया के अंदर ही खुलती है। ये अदब के मुताले का ही फैजान है कि हम इंसानियत के उस दर्द के रिश्ते पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो अहले अदब को विरासत में मिला है।
1: अभी आप सुन रहे थे मकाला जिसका उनवान था अदब, जबान और मुआशरा। मकाला निगार थे जनाब अली मोहम्मद जौहर। कार्यक्रम अंजुमन की अगली पेशकश कलाम शायर में आइए सुनते हैं इमरान खान मान साहब को।
2: युवा दोस्तों, एक कलाम पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है करार की तलाश। यू

छीन ली है बेखबर वो खूब खुद को, बेखबर वो खूब खुद को, क्यों सजाने में लगे हैं बेखबर वो खूब खुद को, क्यों सजाने में लगे हैं। मक्ता पेश कर रहा हूं। आज मुबहम हो चुका है मान अपनों की नजर से, आज मुबहम हो चुका है मान अपनों की नजर से, आज अपने मुझसे पीछा, आज अपने मुझसे पीछा क्यों छोड़ाने में लगे हैं, आज अपने मुझसे

0: कलामी शायर में आप सुन रहे थे इमरान खान मान साहब को, और अब कार्यक्रम अंजुमन की आखिरी पेशकश में आइए सुनते हैं अफसाना, जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार है सादिया राशिद।
1: आखिर अम्मा, आप रो रो कर क्यों हलकान हो रही हैं? जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं लिखता। और क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर हो। प्यारी अम्मा, हिम्मत मत हारिए। अगर जिंदगी में एक बार खजा आती है तो दूसरी बार बहार जरूर आएगी। दानिया अपने लफ्जों में माँ को तसल्ली देने लगी। आखिर मैं एक माँ हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे आखिर क्या कमी नजर आई थी मेरी बेटी में, जिस कमी की वजह से रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की तरह हमारे पास देने को जहेज नहीं है? लालची लोगों को हमारा अखलाक नजर नहीं आया? ये साफ शफाफ दिल नजर नहीं आया? लोग क्या सोचेंगे, 2 साल की मंगनी क्यों टूट गई? आखिर क्या वजह थी? सुल्ताना बेगम के आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मी, लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। अम्मी, ये दुनिया बेबुनियाद बातों के अफसाने बना देती है, फिर लोगों से क्या डरना? बेटी, रहना भी हमें इसी मुआशरे में है। ये बात तो सच है, ये दुनिया न दुख देख सकती है न सुख। छोड़िए अम्मी दुनिया को, अपनी फिक्र कीजिए। इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो माँ को बहलाने लगी। दानिया अपनी माजी की यादों में गोते लगाने लगी। दादी के 2 बेटे थे, उसके अब्बू और शाहरुख चाचा। अब्बू निहायत सुलझे हुए नर्म मिजाज थे, हर काम हमेशा सोच समझ कर करते। इसके बरक्स चाचा अब्बू के उलट थे, मिजाज बहुत गुस्से वाला, हमेशा वही काम करते जो उनका दिल चाहता। दादी बड़ी बहू अपनी पसंद से लाई थी। सुल्ताना बेगम गरीब मगर शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब्बू ने दादी की पसंद से शादी की थी, चाचा ने अपनी पसंद से शादी की थी। चाची एक फैशनेबल खानदान से ताल्लुक रखती थी। बात बात पर अकड़, मिजाज में गुस्सा, दादी मेरी अम्मी को पसंद करती थी, इसलिए चाची मेरी अम्मी से जलती थी। शादी को थोड़े ही दिन गुजरे थे तो चाची ने एक अलग घर लेने का मुतालबा शुरू कर दिया। और जब चाचा ने अलग घर ले लिया तो चाची ने रिश्वत लेने पर उकसाना शुरू कर दिया। चाचा रिश्वत लेकर तरक्की पर तरक्की करने लगे। जब भी दादी चाची से मिलने जाती तो चाची अपनी जुबान दराजी से दादी को 2-4 घाव दे देती। फिर इन्हीं दिनों चाची के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने साइमा रखा। दानिया के अब्बू रिटायर हो चुके थे, घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी थी। इस हालत में माँ को तसल्ली देना और उनका सहारा बनना वो अपना फर्ज समझती थी। नौकरी के लिए वो इश्तहारात देखने लगी, रात देर तक निशान लगाने लगी। या अल्लाह, ये इंटरव्यू है या फैशन शो? फहद गुस्से से खौलता हर एक फैशन एबल लड़की को देख रहा था। 2 घंटे से मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू नहीं फैशन शो में बैठा हूँ, वो गुस्से से बड़बड़ा भी रहा था। मिसेस खान ही सवालात कर रही थी, फहद एक आधा ही सवाल करता, कोई उम्मीदवार जवाब नहीं दे पाती। मैं जा रहा हूँ मम्मी, फहद खड़ा हो गया। बैठो ना बेटा, 1-2 उम्मीदवार बाकी हैं। मिसेस खान उसकी परेशानी समझकर मुस्कुराने लगी। मम्मी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तुम्हारे तैश में आने पर मुझे तो लगता है कोई एडिटर के मियार पर पूरी नहीं उतरेगी। बैठो, आखिरी उम्मीदवार बाकी है, वो भी आएगी और नाकाम लौट जाएगी। फहद गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। मिसेस खान सवालात कर रही थी, दानिया जवाबात दिए जा रही थी। क्या तुम कोई सवाल करोगे फहद? मिसेस खान मुखातिब हुई। फहद ने अजबात में सर हिला दिया। उसने एक नजर उम्मीदवार की तरफ देखा। आने वाली ने काजल की एक हल्की सी लकीर का भी सहारा नहीं लिया था। सादगी, फैशन से बेनियाज चेहरा, दुपट्टा सलीके से सर पर सजाए हुए, उसे हैरत हुई। आपका नाम? दानिया आसिम। तालीम BA। मशगला उर्दू अदब की किताबें पढ़ना। आपकी नजर में तालीम की क्या अहमियत है? तालीम हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी मजहब का हो या किसी मुल्क का। तालीम से इंसान का शऊर बेदार होता है। गुड। कौन सा हर्ज का बीज एक तनावर दख्त बन चुका है? जहेज ही ऐसा नासूर है जो

समाज में हिर्स और लालच को तरक्की दे रहा है। ये ऐसा बीज है जो एक तनावर दख्त बन चुका है। जहेज की वजह से कितनी बहनें बैठी हैं, कितनी ही जिंदा जलाई जाती हैं, इसका खात्मा तो आज की नस्ल पर मुनहसिर है। वेरी गुड, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया सर, वो खुश होते हुए बोली और बाहर निकली। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे नौकरी मिल गई। दानिया जब इंटरव्यू देने आई थी तो बहुत सारे रंगीन आंचलों को देखकर ऐसा लगा उसे आज भी नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी काबिलियत देखकर उसे नौकरी मिल गई। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी नाराज नहीं करता। हफ्ता महीनों में गुजर गया। मिसेस खान दानिया के काम से बहुत खुश थी। अस्सलामुअलैकुम, फहद ने जोरदार सलाम किया। आओ बैठो बेटा, यकीन मानो अभी मेरा दिल तुम्हें ही याद कर रहा था, मिसेस खान खुशदिली से बोली। जहन नसीब, छुट्टी के बाद भी काम किया जा रहा है? वो पास ही फाइल चेक करती दानिया पर एक निगाह डालते हुए पूछने लगा। ये बच्ची तो हीरा है, एडिटर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। फहद की नजरें बार बार दानिया की तरफ उठ रही थी, जो दुनिया जमाने से बेनियाज अपने काम में मशगूल थी। मेरा काम हो गया, दानिया ने मिसेस खान के आगे फाइल रख दी और बैग कंधे पर डालते हुए निकल गई। मेरा काम भी हो गया, फहद ने मिसेस खान को फाइल दी। कार ड्राइव करते हुए उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी दानिया पर पड़ी। कार उसने दानिया के सामने रोक दी। अगर आप माइंड न करें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आप बारिश को देखकर मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मिडिल क्लास की लड़कियों को आदत होती है बारिश में भीग कर जाने की, गर्मियों में तपती धूप में जलने की? हम मिडिल क्लास की लड़कियां कभी ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि हमारे हालात हमें हकीकत पसंद बना देते हैं। मेरी बस आ गई है, अल्लाह हाफिज। दिन गुजरते गए। मिसेस खान दानिया के काम से बहुत खुश थी। सारा स्टाफ उसकी तारीफ करता था। हस्बे आदत फहद रोज की तरह मम्मी से दुआएं लेने कमरे में आया। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद मिसेस खान बोली, बेटा अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। वो सामने वाली कोठी में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी साइमा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत शरीफ मालूम होती है। मम्मी क्या आप चाहती हैं कि मैं किसी आवारा लड़की से शादी करूं? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पसंद जानना चाह रही थी। साइमा क्लब की मेंबर है, आधी आधी रात तक म्यूजिक की आवाजें आती रहती हैं। फहद तफसील बताने लगा। बेटा मैं क्या जानूं कौन कैसा किरदार निभा रहा है। बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुम्हारी पसंद मशरकी लड़की है। अच्छा छोड़ो, दानिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। फहद भी दानिया को पसंद करता था। आज वो ऑफिस में दानिया से अपने ख्यालात जाहिर करना चाहता था। वो दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया, आखिर आपने समझा क्या है? मैं गरीब लड़की जरूर हूँ लेकिन ऐसा साथ रखती हूँ। अगर ये मजाक किया है तो इससे मेरे दिल को बहुत अजियत पहुंची है। आप गलत समझ रही हैं, फहद ने कुछ कहना चाहा। बस रहने दीजिए, मैं खिलौना नहीं हूँ, मेरी मंगनी टूट चुकी है, मेरा भी दिल है, मेरी भी मर्जी है। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या बेवकूफ थी वह खातून? ये अंधी थी। किसी ने कहा नाक मोटी है, किसी ने कहा मेरी आंख छोटी है, किसी ने कहा जहेज इतना सा है, ना मेरे माँ बाप अमीर हैं। फिर कौन से एंगल से आपने मुझे पसंद किया? मुझे आपकी सादगी, आपकी सावगोई और ईमानदारी पसंद है। जिस तरह जौहरी हीरे की कीमत पहचानता है, उस तरह मैंने आपके शफाफ बातिन को देख लिया है। हर इंसान को एक कसौटी पर रखकर परखना नहीं चाहिए, किसी पर एतबार करना सीखिए। इंशाल्लाह आने वाली सुबह खुशी का पैगाम लेकर आएगी। वो उठकर कमरे से निकलता चला गया। सुर्ख रंग के जोड़े में दानिया बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी और फहद की दुल्हन बनकर आई दानिया को वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से तारुफ करा रहा था। ये हमारे पड़ोस में सामने वाली कोठी में रहती हैं। साइमा और चाची को देखकर माजी फिर एक बार नजरों में घूम गया। वो अपना गुजरा हुआ वक्त कैसे भूल सकती थी। कुछ देर वहीं खड़ी रही, फहद आगे बढ़ गया। बेटी मुझे माफ कर दो, बाज़ वक्त इंसान गुरूर में इतना अंधा हो जाता है, हर इंसान को हकीर समझने लगता है, मेरा भी वही हाल है। चाची दानिया के सामने अपना हाल बयान करने लग गई थी। मैं गुरूर में इतनी अंधी हो गई थी, अल्लाह की लाठी बेवाज़ है। 2 महीने पहले साइमा की शादी हुई थी, शादी के 3 दिन बाद साइमा को तलाक हो गई। आखिर मुझे सजा मिलनी थी। बेवाज़ आंखों से आंसू निकले। एक नजर कुछ फासले पर खड़े अपने अम्मी अबू को देखा, कितने खुश नजर आ रहे थे। दानिया इधर आओ, फहद की आवाज पर दानिया धीरे धीरे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। बेशक अल्लाह तू बहुत रहीम है, तू हर एक की दुआ सुनता है। माँ की गोद औलाद के लिए पहला मदरसा होती है। वालदैन बच्चे को जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। चाची ने अपने

0: में औलाद की परवरिश की और मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत अपने रंग में की। वो सोचती हुई लोगों से मिल रही थी। आज जहन पर कोई बोझ और होठों पर कोई शिकवा ना था।
1: अभी आप सुन रहे थे अफसाना, जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार थी सादिया राशिद। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन खत्म हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया।

0: पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की उपयोगिता। नई पहल के अंतर्गत सुनेंगे उम्मीद कार्यक्रम। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान। वार्ताकार होंगी इल्मा रफी। वैज्ञानिकी के अंतर्गत जानेंगे मेटा मटेरियल्स के बारे में। आज के हम सफर में सुनेंगे अनम का काव्य पाठ। चलते चलते सेगमेंट में आप सुनेंगे हीट वेव से बचाओ। शाम 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा हमारे स्वास्थ्य का आधार हमारा पाचन। साथ ही चर्चा होगी चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि के विषय पर। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा कृषि विविधीकरण की आवश्यकता। वार्ताकार होंगे डॉ अनंत कुमार। साथ ही सुनेंगे नई किस्में, मंडी भाव, मौसम और लोकगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। वार्ता सुनेंगे जिसका विषय होगा बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर वेद त्रिपाठी। साथ ही सुनेंगे आज का प्रश्न, सेहत टिप्स, ज्ञान सागर और आज की पाती। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता जिसका विषय होगा कन्हैया लाल मिश्र की हिंदी साहित्य सेवा। वार्ताकार होंगे डॉ अशोक तिवारी। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शुभ्रा तलेगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन। ये थी हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। शब्द रचना है प्रदीप की, संगीत दिया है सी अर्जुन ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत है मूसा पैक की आवाज में। फिल्म का नाम है चार धाम। शब्द रचना है उदय शंकर पानी की, संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। भीला शिंदे की आवाज में फिल्म का नाम है जोधा अकबर। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत दिया है AR रहमान ने।

इसी गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा वर्ग के श्रोताओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग युवा साथियों। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आज हम आपके लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं, जिनकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसासों का आईना बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे इसी से रिलेटेड पूछते हैं एक छोटा सा सवाल। प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित अपनी भावपूर्ण गजलों के लिए प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा दोस्तों, आज के दौर में दुनिया पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड हो गई है और चुनौतियों से भी घिरी हुई है। एक तरफ टेक्निक तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रही है, तो दूसरी हिंसा और अस्थिरता भी देखी जा रही है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी जरूरत होती है शांति, विश्वास और इंसानियत की। और साथियों, जब बात विश्व शांति की होती है तो कुछ ऐसे बहादुर लोग भी याद आते हैं जो अपनी सुरक्षा से पहले मानवता की सुरक्षा को महत्व देते हैं। इन्हीं साहसी लोगों के सम्मान में हर वर्ष 29 मई को यानी आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो सैनिक, पुलिसकर्मी और नागरिक कर्मचारी कई देशों में भेजे जाते हैं, उन्हें यूएन पीस मेकर्स कहा जाता है। दोस्तों, ये सैनिक संघर्ष वाले क्षेत्रों में जाकर शांति स्थापित करते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं और मानवीय सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, जब किसी देश में आतंकवाद या हिंसा बढ़ जाती है, तब शांति सैनिक वहां जाकर संघर्ष को कम करने और शांति वार्ता को सफल बनाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वो रिलीफ कैंप्स की सुरक्षा और जरूरी चीजों की सप्लाई में भी सहयोग देते हैं, जिसमें भोजन, दवाइयां और दूसरी आवश्यक चीजें शामिल हैं। दोस्तों, ये सैनिक प्रभावित देशों में चुनाव कराने, पुलिस व्यवस्था सुधारने और न्याय व्यवस्था को मजबूत कराने का काम करते हैं, ताकि देश दोबारा स्थिर बन सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे बड़े शांति सैनिक योगदान देने वाले देशों में से एक है। इंडियन सोल्जर्स ने और दूसरे क्षेत्रों में कई शांति मिशन में साहस और मानवता का परिचय दिया है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है ये दिवस पहली बार वर्ष 2003 में मनाया गया था, और इसकी तारीख 29 मई इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन शुरू हुआ था। इसका महत्व शांति सैनिकों के योगदान के सम्मान में होता है, मानवता, सहयोग और सह अस्तित्व का संदेश देना होता है, और शहीद शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, आतंकवाद और जलवायु संकट जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, वो केवल सैनिक नहीं है बल्कि मानवता के रक्षक भी हैं। उनका योगदान हमें ये भी सिखाता है कि दुनिया में स्थायी शांति केवल ताकत से नहीं बल्कि सहयोग, संवेदनशीलता और विश्वास से स्थापित की जा सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो देश सेवा और समर्पण की भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: साथियों, आपका युववाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कहा जाता है कि सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही सपनों को नई उड़ान देता है। लेकिन जब कुछ बीमारियां जन्म से पहले ही या परिवारों में पीढ़ियों तक चली आती है, तब उनकी समय पर पहचान बहुत जरूरी हो जाती है।

0: जाती है। जागरूकता और सही जानकारी ही ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसी सोच के साथ हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी बीमारियों के लिए जो जेनेटिकली फैमिली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, उमिट कार्यक्रम। उमिट का पूरा नाम यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है। ये कार्यक्रम न्यूबॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन और जेनेटिक डिजीजेस पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जीन से जुड़े बीमारियों की जल्दी पहचान, परामर्श और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई थी। साथियों, इसके अंतर्गत जेनेटिक टेस्टिंग, जन्म से पहले जांच, काउंसलिंग और रेयर डिजीज मैनेजमेंट की सुविधा दी जाती है। साथियों, उमिट के तहत ऐसी बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है जो इनहेरिटेड होती हैं, जैसे कि सिकल सेल डिजीज, जिसमें रेड ब्लड सेल्स गोल होने के बजाय क्रीसेंट या सिकल शेप के हो जाते हैं, जिससे बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, अगली है थैलेसीमिया। इसमें शरीर सफिशियंट अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। इसी क्रम में बात करते हैं हीमोफीलिया डिजीज की, जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता और खून बहता रहता है। दोस्तों, वैसे तो कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आइए बात करते हैं इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताओं की। डॉक्टर्स को आधुनिक मॉलिक्यूलर मेडिसिन की ट्रेनिंग देना, गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाना, प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न बच्चों की जांच होना। दोस्तों, जानते हैं इस कार्यक्रम से लगभग 3 लाख लोगों को स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक सेवाओं का लाभ मिल चुका है। साथियों, कहते हैं समय पर लिया गया एक सही कदम भविष्य की कई मुश्किलों को आसान बना देता है। उम्मीद कार्यक्रम भी इसी सोच का प्रतीक है, जो समय पर पहचान और सही देखभाल के माध्यम से स्वस्थ भारत की नींव मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, जागरूक बने और स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी सेहत को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। कभी काम की जल्दी तो कभी स्वाद के चक्कर में हमारी छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा असर डालने लगती हैं। इन्हीं आदतों से जुड़ा है हमारी आज की वार्ता का विषय, खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान। वार्ताकार हैं इल्मा रफी। आइए सुनते हैं।
1: कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ने पैसे कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया है। हमारी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी है। सुबह देर से उठना, रात भर जागना, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहना और शारीरिक गतिविधियों को बिल्कुल शून्य कर देना, यही हमारी आज की जीवन शैली बन चुकी है। इस खराब लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा कारण है हमारा बिगड़ता खानपान। घर के बने पौष्टिक खाने की बजाय जंक फूड का खाना। सुबह की शुरुआत अब चिड़ियों की चहचहाट और ताज़ा हवा से नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन और चाय कॉफ़ी के कप के साथ होती है। हमारे पास सबके लिए समय है, ऑफिस के काम के लिए, दोस्तों से चैट करने के लिए, लेकिन अगर समय नहीं है तो सिर्फ अपने खुद के शरीर के लिए। ज़रा सोचिए, हम जिस शरीर के सहारे अपनी पूरी जिंदगी की योजनाएं बनाते हैं, उसी शरीर को हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे खान पान से आज हमारे पारंपरिक और पौष्टिक भोजन गायब होते जा रहे हैं। उसकी जगह पैकेट बंद खाना, अत्यधिक चीनी और सोडियम से भरे जंक फूड ने ले ली है। हम स्वाद के गुलाम बन चुके हैं। पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स हमारी भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि हमारा स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भोजन प्रकृति से जितना दूर होगा वह हमारे शरीर के लिए उतना ही हानिकारक होगा। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये हमारे शरीर का ईंधन है। जैसा ईंधन हम डालेंगे वैसा ही हमारा शरीर काम करता है। शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन ICMR और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़े हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के मुताबिक

देश में हृदय रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या 2018 के 16.7% से बढ़कर अब 25.6% हो चुकी है, यानी हर चौथी बीमारी दिल से जुड़ी है। इसी तरह मेटाबॉलिक और एंड्रोकाइन से जुड़ी बीमारियां जैसे थायराइड और डायबिटीज 15% से बढ़कर 24.2% तक पहुंच गई हैं। आज भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है, जहां लगभग करोड़ से भी अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और करोड़ों लोग डायप्री डायबिटीज की कगार पर हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि बीमारियां अब उम्र देखकर नहीं आती। पहले जो दिल के दौरे या डायबिटीज बुढ़ापे की बीमारी माने जाते थे, आज 25 से 30 साल के युवा इसके शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों के कार्डियोलॉजी विभाग युवाओं से भरे पड़े हैं। खराब जीवन शैली का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है।

0: आज भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है, जहां लगभग करोड़ से भी अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और करोड़ों लोग डायप्री डायबिटीज की कगार पर हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि बीमारियां अब उम्र देखकर नहीं आती। पहले जो दिल के दौरे या डायबिटीज बुढ़ापे की बीमारी माने जाते थे, आज 25 से 30 साल के युवा इसके शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों के कार्डियोलॉजी विभाग युवाओं से भरे पड़े हैं। खराब जीवन शैली का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है। नींद की कमी के कारण हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और डिप्रेशन आज हर घर की कहानी बन चुके हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में है। जब मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। आज की आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन साथ ही हमें बेहद सुस्त और गतिहीन भी बना दिया है। हमारे पूर्वज दिन भर शारीरिक श्रम करते थे, मीलों पैदल चलते थे, लेकिन आज हमारा क्या हाल है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो चुके हैं। घर से ऑफिस जाने के लिए गाड़ी, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और घर के छोटे मोटे कामों के लिए भी रिमोट कंट्रोल। स्थिति तो ये हो चुकी है कि पंखा चलाना हो, लाइट बंद करनी हो या कमरे का तापमान बदलना हो, हमें अपनी जगह से हिलना तक मंजूर नहीं है। हमने तकनीक को अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, लेकिन सच तो ये है कि आज तकनीक ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। मशीनें खा गईं इंसानों की हरकत इस कदर, मशीनें खा गईं इंसानों की हरकत इस कदर कि अब खुद चलकर पानी पीना भी एक काम लगता है। इस अत्यधिक आराम पसंदी ने हमारे शरीर में प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह थका दिया है। जब मांसपेशियां काम नहीं करती तब पसीना नहीं बनता, जो शरीर के भीतर जमा होने वाली अतिरिक्त कैलोरी चर्बी बनकर हमारी नसों को ब्लॉक करने लगती है। जिसे हम लग्जरी लाइफ या आरामदेह जिंदगी कह रहे हैं, वह असल में बीमारियों का दिया गया एक खुला निमंत्रण है। ऋग्वेद की एक पंक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात जीवन के सभी कर्तव्यों, धर्म और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहला और मुख्य साधन हमारा शरीर ही है। अगर ये शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो हम चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। साथियों, समस्या गंभीर है, लेकिन समाधान किसी महंगी दवाई में नहीं बल्कि हमारे हाथों में है। हमें अपनी दैनिक आदतों में कुछ व्यवहारिक बदलाव करने होंगे। अपनी डाइट में कम से कम 7% हिस्सा प्राकृतिक और कच्चे भोजन जैसे ताजे फल, सलाद, नट्स और अंकुरित अनाज रखें। पैकेट बंद और प्रिजर्वेटिव वाले भोजन को अलविदा कहें। जिम जाना जरूरी नहीं, आप रोज केवल 30 से 45 मिनट तेज गति से पैदल चलें। योग करें, क्योंकि शरीर को गतिमान रखना बेहद जरूरी है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को खुद से दूर कर दें। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी और शांत नींद बेहद आवश्यक है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर हमने समय रहते अपनी आदतों को नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां विरासत में सिर्फ बीमार शरीर और थका हुआ मन ही पाएंगी। आज आवश्यकता सिर्फ स्वाद बदलने की नहीं बल्कि सोच बदलने की है, क्योंकि स्वस्थ जीवन कोई फैशन नहीं बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस्म अगर स्वस्थ हो तो ख्वाब भी ऊंचे उड़ते हैं। जिस्म अगर स्वस्थ हो तो ख्वाब भी ऊंचे उड़ते हैं, वरना थकी हुई रूहें अक्सर हौसले हार जाती हैं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप है अपनी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य के साथ। अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान। वार्ताकार थी इल्मा रफी। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ते खानपान की, तो ये याद रखना भी बेहद जरूरी है कि स्वस्थ पाचन अच्छी सेहत की नींव होता है। इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए हर साल 29 मई को, यानी आज ही के दिन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पाचन तंत्र और सही खानपान

0: के प्रति जागरूक किया जा सके। और अब इसी विषय से जुड़ी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है ये खूबसूरत काव्य पाठ अनम द्वारा, आइए सुनते हैं।
1: कविता। खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ता खानपान, आज का इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की गहराइयां तक नाप ली, लेकिन अपनी थाली से पेट की दूरी और सोफे से सेहत की दूरी नहीं नाप पा रहा। हमने तरक्की तो की, पर क्या वाकई हम आगे बढ़े हैं? कविता है इस प्रकार से। तेजी की इस बेतहाशा दौड़ में हम शांति को कहीं पीछे छोड़ आए, चूल्हे की उस ममता भरी आँच को हम बाजार के डिब्बों में ले आए। भोर की पहली लालिमा अब आंगन में नहीं, डिजिटल पर्दों पर आती है। ये जो बोझ है वो रातों का नहीं, शायद हमारी नई फितरत का हिस्सा है। आज हम भूखे पेट को नहीं, आहों को लगती है। सोशल मीडिया पर खाना देखकर हम ऑर्डर करते तो हैं, लेकिन पोषण देखकर नहीं करते हैं। कविता इस प्रकार से है कि वो हरी सब्जियां, वो फलों की लाली अब फीकी लगती है। मसालों और रसायनों की दुनिया अब सबको नीकी लगती है। तेल में डूबे समोसे और वो पिज्जा के गोल घेरे स्वाद के गुलाम बन गए, मगर हम सब शाम और सवेरे। हम पीते हैं वो काली बोतलें जिससे प्यास बुझती नहीं, हड्डियां खोखली हो रही हैं पर हमें बात सूझती नहीं। मैदा हमारी आंतों में जमता, कभी इसको रोका ही नहीं, और इंसान समझता है कि उसका रुतबा उससे घटता ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास समय तो है, पर क्या वाकई हम फोन स्क्रॉल कर सकते हैं पर 20 मिनट टहल नहीं पाते हैं। कविता इस प्रकार से है आगे कि पाँव अब चलना ही भूल गए, पहियों पर ही गुजारा है, लिफ्ट का वो बटन दबाना बस यही सहारा है। नींद आंखों से कोसों दूर, रातों को वेब सीरीज का सहारा है, तनाव का ये काला साया अब हर चेहरे पर गहरा है। जिम की सदस्या तो ले ली पर जाना वहां कम होता है, कभी महल सा सजीला था ये वजूद अब कबाड़ सा ढेर लगता है। उम्र से पहले की झुर्रियां और दवाइयों का वो ढेर, कुदरत से जो की थी मनमानी अब वही दिखा रही है अंधेर। अब हम ये जानते हैं कि दवाइयों से अलमारियां भरने से बेहतर है कि किचन में बदलाव लाना है। याद रखिए कि आपकी असली दौलत आपकी सेहत है। कविता इस प्रकार से है कि उठो कि अभी वक्त है, इस काया को संभालो, पुरानी सादगी को फिर से अपनी थाली में ढालो, थोड़ी धूप थोड़ा पसीना कुदरत से नाता जोड़ो, जीभ की इन चटोरी मोह माया को अब छोड़ो। बीमार शरीर के साथ जीत भी हार जैसी होगी, जो आज संभल गया तो कल की भोर निराली होगी। सेहत ही असली पूंजी है, इसे संभाल कर रखना, वरना हसरत ही रह जाएगी इस दुनिया को चखना। बाजारों के विज्ञापनों ने कैसा भ्रम फैलाया है, जो सेहत को डस रहा है उसे ही हेल्दी बताया है। पैक्ड जूस के डिब्बों में बस चीनी का समंदर है, हम समझते हैं अमृत है पर वो धीमा जहर अंदर है। चमकते पैकेटों के पीछे जो रसायनों की माया है, उसने हमारी रगों में एक धीमा जहर बनाया है। जीरो कैलोरी और लो फैट के बस लुभावने नारे हैं, इनको खाकर देखो कितने अस्पताल पधारे हैं। हम स्वाद के पीछे अंधे हैं और वो व्यापार चलाते हैं, हमारी गिरती सेहत पर वो कोठियां अपनी बनाते हैं। थाली से मोटे अनाज का वो पुराना दौर चला गया, वो बाजरा मक्का ताकत थे, वो स्वाद फैशन का खा गया। अब बच्चों पर भी इसका असर हम देखते हैं कि कविता इस प्रकार से है कि बदली हमारी आदत तो बच्चों पर भी आफत आई है, बचपन की वो उछल कूद अब स्क्रीनों में समा गई है, मैदानों की वो धूल कहाँ अब ऑनलाइन के मेले हैं, आंखों पर चश्मे बड़े चढ़े जिस्म हुए अब ढीले हैं। दूध मलाई छोड़ के बच्चे बर्गर की जिद करते हैं और हम भी आधुनिकता में उनके थाल में जहर भरते हैं। छोटी सी उम्र में अब मोटापा पैर पसार रहा, ये बिगड़ता खानपान ही उनको कल को मार रहा। जो कल के भारत के रक्षक थे वो आज सुस्त और बीमार हैं, सोचो हम कैसी पीढ़ी को करने चले तैयार हैं। ये सिर्फ हमारा तन नहीं, आगे आने वाली नस्लें हैं, अगर आज खुद ही दूषित होंगे तो कैसे आने वाली फसलें हैं। जैसा खाओगे अन्न तुम, वैसा ही होगा मन तुम्हारा, इस खान पान नहीं बदला विचारों की बहती धारा। गैस एसिडिटी और कब्ज में जब ये काया जलती है, फिर चिड़चिड़ापन की भाषा इस जबान से निकलती है। तनाव कोई बीमारी नहीं, हमारी थाली का ही हिस्सा है, जो पेट साफ नहीं रहता।

0: तो दिमाग का बिगड़ता किस्सा है। आलस की चादर ओढ़ के हम बस सोफे पर सुस्ताते हैं, फिर डिप्रेशन के डॉक्टरों के हम चक्कर रोज लगाते हैं।
1: साथियों, जरा सोचिए, अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने हो और फिर दिखाई ना दे, या फिर ऐसी टेक्निक जो रोशनी और आवाज को अपने हिसाब से मोड़ दे, सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसा सचमुच संभव हो रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अद्भुत इनोवेशन की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेटा मटेरियल्स की, एक ऐसी अनोखी वैज्ञानिक टेक्निक जो पदार्थों के सामान्य गुणों को चुनौती देकर भविष्य की नई संभावनाओं को द्वार खोल रहा है। मेटा मटेरियल्स वो आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड पदार्थ होते हैं जिन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि वो प्रकृति के सामान्य पदार्थों से अलग गुण दिखाएं। इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि ये प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को असामान्य तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि किसी पदार्थ की संरचना को विशेष पैटर्न में बनाया जाए तो वो प्रकाश को मोड़ सकता है, ध्वनि को रोक सकता है या वस्तु को अदृश्य दिखा सकता है। मेटा मटेरियल दो शब्दों से बना है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और मटेरियल मतलब पदार्थ। साथियों जानते हैं, जब कोई लाइट, साउंड, रेडियो वेव इनसे गुजरती है तो ये तरंग की दिशा बदल सकते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसे रिफ्लेक्ट या फोकस कर सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं मेटा मटेरियल्स के प्रकार की। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटा मटेरियल्स, जिसमें प्रकाश और रेडियो वेव्स को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका यूज एंटीनास, रडार और वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। अगला है अकाउस्टिक मेटा मटेरियल्स, ये ध्वनि को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका यूज नॉइस कैंसिलेशन और साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स में किया जाता है। साथियों इसी क्रम में बात करते हैं ऑप्टिकल मेटा मटेरियल्स की, जो प्रकाश को नियंत्रित कर सकता है। इसका उपयोग सुपर लेंस और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग में होता है। और साथियों नेक्स्ट है थर्मल मेटा मटेरियल्स, जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम्स में हीट फ्लो को नियंत्रित कर सकता है। साथियों भारत में कई संस्थान इस पर शोध कर रहे हैं, जिसे DRDO, IITs और विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर में भी रिसर्च हो रही है। साथियों अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां मेटा मटेरियल्स भविष्य की क्रांति ला सकते हैं, जैसे कि एडवांस स्मार्टफोन्स, स्मार्ट बिल्डिंग्स, सुपरफास्ट वायरलेस सिस्टम्स, बेटर मेडिकल स्कैनर्स, इनविजिबल डिवाइसेस वगैरह। तो दोस्तों विज्ञान की ये अनोखी दुनिया हमें ये सिखाती है कि कल्पनाएं जब खोज में मिलती हैं तो चमत्कार जन्म लेते हैं। मेटा मटेरियल्स केवल एक टेक्निक नहीं बल्कि भविष्य की वो दस्तक है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को और भी स्मार्ट, तेज और अद्भुत बना सकती है। साथियों उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी यूजफुल होगी। अब साथियों चलते चलते आप सभी के लिए एक छोटी सी टिप। हम जैसा कि जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बढ़ते तापमान और तेज धूप से बचें, ठंडा पानी पिए, उसके साथ साथ नींबू पानी, छाछ और ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करें। ज़्यादा तला भुना ना खाएं, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकेगी। अब साथियों वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि पद्मश्री से सम्मानित अपनी भावपूर्ण गजलों के लिए प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है बशीर बद्र जी। तो इसी के साथ साथियों कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

राम राम भाइयों बहनों, मैं लोकेंद्र पाठक कार्यक्रम ग्रामीलोक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने हमेशा ही किसान, गांव और मेहनतकश लोगों की आवाज को देश के सामने बहुत ही मजबूती से रखा। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि यदि किसान स्वस्थ और मजबूत रहेगा तो गांव भी मजबूत रहेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य का आधार हमारा पाचन। मित्रों, आजकल गांव की चौपाल हो या शहर का बाजार, हर जगह लोग पेट की समस्या की बात करते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। किसी को गैस की परेशानी, किसी को कब्ज की शिकायत। साथियों, कई लोग कहते हैं, भैया खाना तो खा लेते हैं लेकिन शरीर में ताकत नहीं लगती है। असल में इसकी जड़ अक्सर खराब पाचन ही होता है। मित्रों, यदि हमारा पाचन सही रहेगा तो खाना भी सही तरीके से शरीर को लगेगा और शरीर में ताकत बनी रहेगी। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमारा पेट ही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। यदि पेट खराब रहेगा तो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएगा। मित्रों, पहले गांव में लोग सादा और घर का बना भोजन खाते थे, मौसम के अनुसार खाना खाते थे, इसलिए उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी। जबकि आजकल जल्दी जल्दी खाना, तला भुना ज्यादा खाना और समय पे भोजन ना करना, ये हर जगह की बात हो गई है। अब चाहे गांव हो या शहर हो, पाचन खराब होने का यही सबसे बड़ा कारण होता है। मित्रों, आज के समय में काम की जल्दी में कई लोग सुबह का नाश्ता ही छोड़ देते हैं और फिर दिन भर कमजोरी महसूस करते हैं। ये आदत शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती है। और खाना हमेशा आराम से और अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाना पाचन को बिगाड़ देता है। और अभी तो गर्मी चल रही है, ऐसे में गर्मी के दिनों में हल्का और सुपाच्य भोजन करना ही अच्छा माना गया है। ज्यादा मसालेदार भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। गर्मी पहले से ही बाहर लग रही हुई है और आप अंदर से भी ऐसे मसालेदार खाना खाओगे, अंदर से भी शरीर गर्म हो जाएगा, तो भैया स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। इसीलिए साथियों, दही, छाछ, हरी सब्जियां, सलाद और मौसमी फल खाए जाते हैं क्योंकि इससे हमारा पाचन अच्छा रहे। अच्छा मित्रों, हमारे गांव में पहले लोग खाने के बाद थोड़ा टहलते थे, ये आदत भी पाचन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। दिन भर केवल बैठे रहना या बिल्कुल मेहनत ना करना भी पेट की समस्या को बढ़ा सकता है। वैसे तो मित्रों, हम किसान कभी खाली बैठते नहीं है, हमारा तो शरीर ही मेहनत का आदि होता है। लेकिन जो साथी मेहनत नहीं कर पाते हैं या मेहनत करना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि नियमित काम करना शरीर को हमेशा ही स्वस्थ रखता है। इसलिए कुछ ना कुछ दिनचर्या आपकी, शारीरिक गतिविधि आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है साथियों, कि बहुत देर तक खाली पेट रहना भी ठीक नहीं है। समय पर भोजन करना बहुत जरूरी माना गया है। अच्छा मित्रों, पानी भी पाचन में बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए हम सबको दिन भर पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज का बहुत ठंडा पानी ना पीकर यदि हम मटके का पानी पिए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देता है और पाचन में भी सहायता करता है। साथियों, यदि आपका भी पेट बार बार खराब रहता है या गैस और कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है तो लापरवाही ना करें, समय पर सलाह लें, उपचार करवाएं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, अच्छा पाचन मतलब अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य मतलब खुशहाल जीवन। भाई, हम खेत की मिट्टी का भी तो ध्यान रखते हैं।

हैं ना, ताकि फसल अच्छी हो, उसी तरह से शरीर का भी ध्यान रखना होगा, तभी तो भैया खेती कर पाएंगे। खेती कैसे करोगे जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा? तो संतुलित भोजन करें, समय पर खाएं और अपने पाचन को मजबूत बनाएं। जब पेट स्वस्थ रहेगा तो तन के साथ साथ मन भी प्रसन्न रहेगा। वैसे साथियों, मन प्रसन्न करने का हमारे पास एक और उपाय है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। आइए शीरो खान के सुरों में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: साथियों, आज के समय में खेती में केवल एक ही फसल पर निर्भर रहना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मौसम और बाजार का भाव कभी भी बदल सकता है। मित्रों, यदि किसान खेती के साथ सब्जी, बागवानी, पशुपालन या मधुमक्खी पालन जैसे काम भी करे तो आमदनी के कई रास्ते बन जाते हैं। साथियों, इसी को कृषि विविधीकरण कहा जाता है, जिससे जोखिम कम होता है और किसान की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है। आइए हम सभी डॉक्टर अनंत कुमार से कृषि विविधीकरण को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।
1: कृषि विविधीकरण की आवश्यकता एवं उपाय। खेती की एक ऐसी उन्नत पद्धति है जिसमें पारंपरिक फसलों के अलावा विभिन्न प्रकार की उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती जैसे सहायक कार्यों को भी शामिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना एवं मौसम में आए बदलाव के कारण होने वाली हानि को कम करना व बाजार से जुड़े जोखिमों को कम करना है। कृषि विविधीकरण को मुख्य रूप से दो तरीकों से समझा जा सकता है। नंबर एक, फसल विविधीकरण। इसमें किसान एक ही मुख्य फसल जैसे धान गेहूं की खेती वृहद स्तर पे करते हैं। इसके करने से उत्पादन कम होता है तथा शुद्ध लाभ भी कम होता है। सभी किसान फसल उत्पाद बाजार में लाते हैं जिससे कि फसल का मूल्य कम मिलता है। इससे किसान भाई को आर्थिक रूप से हानि होती है। इसका किसान भाई ध्यान धान गेहूं के रकबा को कम करके कम पानी वाली फसलों, अधिक मूल्य वाली फसलों जैसे फल, सब्जियों, मसाले, फूलों, तिलहनी, दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दें। जिन किसान भाइयों के पास कम जमीन है, 10 डिसमिल है, 20 डिसमिल जमीन है, उसी जमीन में समान आकार का पट्टी नुमा खेत में सब्जियों की खेती जैसे मूली, गाजर, पालक, फूलगोभी, पत्ता गोभी इत्यादि को वर्ष भर मौसम के अनुसार लगाने से वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। इसमें यदि एक पट्टी फसल खराब हो जाती है या उस फसल का बाजार भाव गिर जाता है तो भी किसान को कम नुकसान होता है। एक फसल पूरी खेती में लगाने से फसल खराब होने पर बाजार भाव गिर जाने से किसान को काफी नुकसान हो जाता है। किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरा, गतिविधि विविधीकरण। इसमें किसान खेती के साथ साथ अन्य सहायक गतिविधियां शामिल किया जाता है जैसे पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन एवं मशरूम की खेती कर सकते हैं। सर्वप्रथम पशुपालन में खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करना किसान के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इससे किसान को दुग्ध, मांस, ऊन, चमड़ा इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसे बिक्री करके आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। दुधारू पशुओं को पालन करने से किसानों को प्रतिदिन आमदनी होती है। इससे किसान को दैनिक में होने वाले खर्चे की पूर्ति होती रहती है। साथ साथ ही इसके गोबर से बने खाद का खेत में उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ साथ रासायनिक उर्वरकों के क्रय करने में होने वाले व्यय की कमी होती है। बकरी पालन करने से किसान भाइयों को किसी भी समय उसे रुपये की जरूरत पड़े तो उसे बेचकर काम कर सकते हैं। इसके लिए किसान को बाजार भी जाना नहीं पड़ता है। किसान के घर पर खुद प्रतिदिन व्यापारी आते हैं।

उद्यान के अंतर्गत किसान भाई खेती के साथ साथ उद्यान की फसल जैसे फल फूल सब्जियों की खेती करके आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। मछली पालन में किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए मछली पालन महत्वपूर्ण योगदान है। मछली पालन में छोटे से क्षेत्रफल में एवं कम देखभाल में अत्यधिक लाभ होता है। दुग्ध उत्पादन में किसान भाई दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस बकरी के पालन करने से प्रतिदिन दूध की प्राप्ति होती है। इसमें खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। दुग्ध को सीधे बाजार में बेचकर एवं दूध से बने दही पनीर घी इत्यादि तैयार कर इसे बाजार में बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, जैसा कि किसान भाई आप लोग जानते हैं कि खेती के साथ साथ यदि मधुमक्खी पालन आय का अतिरिक्त स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें केवल मधुमक्खी की देखभाल करने से ही अत्यधिक लाभ होती है। और यदि किसान भाई इसे प्रशिक्षण लेकर हम मधुमक्खी पालन प्रारंभ कर दें तो इसको सबसे अच्छी तकनीक है। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य केंद्रों में भी प्रशिक्षण आयोजित की जाती है। मशरूम उत्पादन, किसान भाई अपने घर के एक छोटे से क्षेत्रफल में आप इसे मशरूम उत्पादन की इकाई लगाकर फिर उसे आप सीख लें तो उसे वृहद स्तर पर करके आप आय की प्राप्ति कर सकते हैं। खास कर करके वाइस्टर मशरूम और बटर मशरूम को आप खेती में उपयोग कर सकते हैं। कृषि विविधीकरण के लाभ क्या क्या हैं? इसमें सबसे प्रथम जोखिम को कम होना। किसान भाई किसी भी एक फसल के खराब होने पर, बाजार में दाम गिर जाने पर या अन्य फसलों के कम उत्पादन होने से उसे आर्थिक सुविधा मिलती है, क्योंकि इसमें हम कई तरह के फसल उगाते हैं, जिससे यदि एक फसल हमारा कमजोर भी हो जाए या खराब हो जाती है तो दूसरे फसल से हमें लाभ मिल जाता है। आय में निरंतरता, इसमें अलग अलग फसलों और उत्पादों के होने से किसानों को पूरे साल नियमित रूप से आय प्राप्ति होती रहती है। भूमि की उर्वरता शक्ति में सुधार, दलहनी फसलों को इस फसल में चक्र में शामिल करने से मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्व बने रहते हैं। मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहने से हमें रासायनिक उर्वरकों पर जो है निर्भरता कम रहते हैं। संसाधन का बेहतर उपयोग, इसके लिए जैसे पानी जमीन मानव श्रम का सही उपयोग और संतुलित उपयोग संभव हो पाता है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के तरफ से जो योजनाएं हैं, जैसे कि किसान इसे लागू कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं या विविधीकरण में आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इस योजना के अंतर्गत किसान को फल एवं सब्जियों के उत्पादन से लेकर उसके रखरखाव प्रसंस्करण के साथ साथ बिक्री में भी सहायता प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसान को कौशल संवर्धन हेतु कृषक प्रशिक्षण प्रदर्शन और भ्रमण कर कार्यक्रम कराए जाते हैं, और इसके अंतर्गत उद्यान या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग भी लगाए जाते हैं, जिससे कि किसान अपना कर अपना आय बढ़ा सकते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंतर्गत किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाता है। तीसरा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत किसानों को फसलों में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि पानी की एक एक बूंद या ड्रिप इरिगेशन, जिसमें कि किसानों को बहुत छूट पर दिया जाता है, इसका भी लाभ किसान ले सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि विविधीकरण का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिदिन खेती का रकबा घटता चला जा रहा है, रोजगार का साधन कम हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः एक परिवार में यदि चार सदस्य हैं, दो तीन बीघा जमीन है और एक दो भैंस है और दो चार बकरियां हैं, प्रायः मध्यम वर्ग किसान के यही स्थिति है। इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है, चारों आदमी इसी में लगे रहते हैं। कोई सुबह में खेत में जाता है, कोई भैंस में जाता है, लेकिन उसे परिवार का विकास नहीं होता है और आर्थिक रूप से कमजोरी होती है। इससे होता क्या है कि परिवार में कलह होता है। इसके लिए खास करके जो मध्यम और निम्न वर्ग के किसान है, उसमें एक आदमी तीन चार बीघा अपना जमीन और पाँच सात बीघा जमीन बटाई पे या लीज पर ले लें और उसमें सब्जी या फलों की खेती करें, उसे साल भर आमदनी होगा। एक परिवार के सदस्य पाँच छह भैंस रखें, जिससे कि उसके दूध उत्पादन से 10,000 15,000 महीना 20,000 आमदनी होगा। एक आदमी 20 से 25 बकरी पालन करें और एक आदमी मधुमक्खी पालन करें कि मुर्गी पालन करें, इससे आय का स्रोत ज्यादा होगा। जब आय का स्रोत होगा तो परिवार में आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी,
परिवार का विकास।

0: अच्छा होगा। इसीलिए आप समय से किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कृषि विविधीकरण का अपनाएं, जिससे कि अपना परिवार के साथ साथ देश का भी विकास संभव हो पाएगा।
1: साथियों, अभी हमने डॉक्टर अनंत कुमार से कृषि विविधीकरण को विस्तार से समझा, लेकिन मित्रों, बातें सुनने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम इन बातों को अपनाएं भी। उसके बाद देखिए कि हम किसानों को अपनी खेती से कितना लाभ होता है। मिलते हैं एक अल्प अंतराल के बाद।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, अब समय है आपको नई किस्म के बारे में बताने का। आजकल किसानों के बीच काले गेहूं की खेती चर्चा में है, क्योंकि इसमें सामान्य गेहूं की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। काला गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलने में अधिक पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी बाजार में मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आगरा क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी में भी काला गेहूं उगाया जा सकता है, बस किसान को सही बीज और उचित जानकारी की आवश्यकता होती है। और ये जानकारी आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं मौसम की। हम किसान हैं और हमारा पूरा काम यानी खेती मौसम पर ही निर्भर है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आगरा और आसपास के क्षेत्रों में 70-80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चल सकती है और कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। और तापमान की बात करें तो विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे, अनेक स्थानों पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथियों, मौसम की जानकारी के साथ जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जिसमें टमाटर का भाव है 1000 से लेकर 1240 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 900 से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी का भाव है 2600 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं आलू का भाव गुणवत्ता के आधार पे 500 से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल। तो मित्रों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के बाद हमें पता है अब आपका मन हो रहा है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं रश्मि धवन के सुरों में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित कार्यक्रम ग्राम्यालोक। ये आकाशवाणी आगरा का केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों, हम सभी लोग जब दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम को वापस घर जाते हैं तो बस यही चाहते हैं कि जाते ही थोड़ा सा आराम मिले, मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ी देर का सुकून मिले। और फिर ये है कि थोड़ा सा हम चैन से बैठ सकें, बातचीत कर सकें परिवार के साथ। और यही जो चैन है, यही सुकून है।

यही परिवार की शांति हमारे सारे दिन की थकान को पल भर में दूर कर देती है। और साथियों, यही जो बात है, ये हमारे आस पड़ोस, हमारे समाज, हमारे देश सभी पर लागू होती है। और भाई, अगर देखिए वहाँ शांति ना हो और उसकी जगह किसी भी देश में किसी भी तरह की आंतरिक कलह है, अंदरूनी तनाव है और संघर्ष इतना बढ़ जाए कि उसका असर वहाँ के नागरिकों पर, वहाँ के संसाधनों पर पड़ने लगे, तो जाहिरी तौर पर ऐसा जो देश है, ऐसे देश के नागरिकों का जो विकास है ना, वो तो रुकेगा ही रुकेगा। और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? दूसरा समाज और दूसरे देशों के लोग। बिल्कुल इसीलिए हमारे जो पुराने लोग थे वो हमेशा यही कहते थे कि भाई, घर की बातों को और घर के मन मुटावों को कभी भी बाहर के लोगों को पता मत चलने दो, आपस में ही सुलझा लो, वरना बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। और देखिए, हमारे बड़े बूढ़ों की यही सोच आज वर्तमान में भी कितनी प्रासंगिक है। हम आए दिन कई देशों के आपसी संघर्षों की बातें रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों के ज़रिए पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे में यहीं पर ज़रूरत पड़ती है ऐसे संगठन की और लोगों के प्रयासों की जो कि इन संघर्षों के माहौल में शांति लाने का काम करें। और साथियों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों से जुड़े ऐसे ही सैनिक शांति मसीहा की तरह कई सालों से जुटे हुए हैं। और साथियों, देखिए भाई, मसीहा का नाम आते ही हमें याद आया आज का सवाल भी, और वो ये कि हमारे देश में किन्हें किसानों का मसीहा माना जाता है। तो भाई, आप लोग हो सकता है समझ गए हों, और अगर नहीं समझे तो चलिए आपको एक हिंट भी देते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भाई, अब तो लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, उनके बारे में और बातें करने से पहले याद करते हैं अपने उन सभी शांति सैनिकों को जिन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों से जुड़कर कई देशों के संघर्षों को, युद्धों को रोकने में अपना मूल्य योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। और आज का दिन यानी कि 29 मई का दिन हमारे ऐसे ही शांति सैनिकों के नाम दर्ज है जिन्होंने कि अपने साहस से, अपने समर्पण से तमाम शांति अभियानों में हिस्सा लिया और सबके बीच शांति बनाए रखने में कई बार अपने बलिदान भी उन्होंने दिए। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन से जुड़े तमाम देशों के सैनिक समय समय पर अपनी सेवाएं ऐसे मिशनों में देते हैं। और भाई, हमारे देश के भी जो शांति सैनिक हैं वो इन शांति मिशनों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही पुराने योगदानकर्ताओं में से एक हैं। और केवल संघर्षों और युद्धों में नहीं, बल्कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में या जब भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के शांति मिशनों के ज़रिए भारत हमेशा ही अपना सहयोग देता रहा है। क्योंकि भाई, भारत की सोच तो हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की ही रही है, और हम तो अपने पूजा पाठ तक में भी संपूर्ण मानव कल्याण की और विश्व शांति की कामना ही करते हैं। और इसीलिए ऐसे कई मिशनों में हमारे कई सौ शांति सैनिकों ने अपनी कई बार जान भी गंवाई है। तो अपने ऐसे सभी शांति सैनिकों के सम्मान में आज के दिन नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सभी सैनिकों को याद किया जाता है, उनकी भूमिका और उनके कर्तव्यों को सराहा जाता है, इस प्रण के साथ कि भारत हमेशा से ही हर जगह शांति की बात सोचता भी है और करता भी है। और आज के संघर्षों के दौर में उसकी कोशिश यही है कि भाई, हम सब मसलों का हाल और जो हल है वो आपसी समझदारी और बातचीत से निकाल कर निकल जाएं, और हमेशा सब में शांति और सौहार्द की भावना फैलाएं, ताकि आम जनता जो है ना, वो शांति और सुकून से रह सके। और साथ ही साथ केवल जनता का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है इस कुदरत का भी, इस दुनिया की खूबसूरती का भी। बेशक हमने अपनी ज़मीनें बांट ली हैं, पर भाई,

0: श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ मैं हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ सारी दुनिया में हमेशा ही शांति चाहता है और इसीलिए संघर्षों के समय भी हर संभव मदद करने की कोशिश भी करता है। और देखिए ना, आजकल के हालातों को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को, और इसमें भी भारत मुश्किल घड़ी का डटकर खुद सामना भी कर रहा है और दुनिया को भी नए नए रास्ते दिखा रहा है। तो आज भारत की इस भूमिका पर विस्तार से रोशनी डाल रहे हैं प्रोफेसर वेद त्रिपाठी।
1: यदि हम पिछले 30-35 वर्षों की दुनिया को देखें तो एक समय ऐसा था जब यह माना जाता था कि पूरी दुनिया धीरे धीरे एक वैश्विक गांव बन रही है। देशों के बीच की सीमाएं आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होती जा रही थीं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना भी इसी सोच के साथ हुई थी कि दुनिया में मुक्त व्यापार बढ़ेगा, वस्तुएं आसानी से एक दूसरे देश जाएंगी और सभी देशों को समान अवसर मिलेंगे। WTO का उद्देश्य विश्व को एक बाजार के रूप में परिवर्तित करना था। केवल WTO ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम अन्य क्षेत्रीय संगठन भी बने थे जो एक मुक्त और खुले बाजार के रूप में विश्व को बदलना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर यूरोप का पहले यूरोपियन कॉमन मार्केट बना था जिसका उद्देश्य पूरे यूरोप को एक बाजार में बदलना था और अंततः यह एक बाजार बनकर पूरा यूरोप एक देश के रूप में यानी एकीकृत देश के रूप में बदल जाना था। किंतु अब समय के साथ यह स्थितियां बदल गई हैं। अब चक्र संभवतः उल्टा चलने लगा है। उस समय यह विश्वास था कि यदि व्यापार बढ़ेगा तो युद्ध कम होंगे, सहयोग बढ़ेगा और पूरी दुनिया आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हो सकेगी। लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। अब वही देश जो कभी खुले व्यापार और वैश्वीकरण के सबसे बड़े समर्थक थे, वे भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं। अब हर देश यह सोच रहा है कि सबसे पहले मेरा अपना हित सुरक्षित रहे। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसने WTO को प्रारंभ करने की सर्वप्रथम पेशकश की थी और संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में बनाने का संकल्प लिया था, आज बड़ा आश्चर्य का विषय है और बड़ी विडंबना के साथ देखा जा सकता है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही सबसे पहले अपने संकल्प से पीछे हट रहा है। यानी वैश्वीकरण की जगह अब धीरे धीरे आर्थिक राष्ट्रवाद या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सबके पीछे सबसे मूलभूत और संरचनात्मक कारण है नई तकनीकों का उभरना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं रह गई हैं, ये अब आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बनती जा रही हैं। इन तकनीकों के परिवर्तन से जो बाढ़ आई है, आज विश्व में उथल पुथल का मूल कारण यही तकनीकी परिवर्तन है। पहले किसी देश की शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधनों, सेना या उद्योगों से मापी जाती थी, लेकिन अब तकनीकी क्षमता स्वयं शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनती जा रही है। उदाहरण के लिए एडवांस कंप्यूटर चिप्स आज आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। मोबाइल फोन से लेकर

रक्षा उपकरणों तक हर क्षेत्र इन पर निर्भर है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार की नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता की है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, मीडिया और यहाँ तक कि युद्ध की प्रकृति को भी बदल सकती है। इसीलिए अब तमाम देश नई तकनीक को केवल बाजार का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। नई तकनीक ने वैश्विक सप्लाई चेन यानी विश्व की आपूर्ति श्रृंखलाओं का भी महत्व बदल दिया है। पहले यह माना जाता था कि उत्पादन वहां होना चाहिए जहां लागत सबसे कम हो, लेकिन अब देश यह सोच रहे हैं कि यदि किसी संकट के समय आवश्यक तकनीक या सामान की

पहले यह माना जाता था कि उत्पादन वहां होना चाहिए जहां लागत सबसे कम हो, लेकिन अब देश यह सोच रहे हैं कि यदि किसी संकट के समय आवश्यक तकनीक या सामान की आपूर्ति रुक जाए तो क्या होगा। कोरोना महामारी और विभिन्न युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है, इसीलिए अब केवल एफिशिएंसी नहीं बल्कि रिजिलियंस यानी स्थिरता और सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आज अमेरिका अपने यहाँ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। यूरोप ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है और भारत आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं पर बहुत बल दे रहा है। यानी WTO के समय की सोच कि दुनिया एक साझा आर्थिक व्यवस्था बनेगी, विश्व एक एकीकृत बाजार हो जाएगा, अब उसकी जगह एक अधिक सावधान और रणनीतिक सोच उभर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में भी इसी प्रकार का परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। दुनिया फॉसिल फ्यूल यानी पारंपरिक ईंधन से धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और बैटरी तकनीक का महत्व दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक नया भू राजनीतिक संघर्ष भी उभर रहा है, क्योंकि इन नई तकनीकियों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल जैसी विशेष धातुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए अब इन संसाधनों पर नियंत्रण भी वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज दुनिया केवल तेल के लिए नहीं बल्कि डेटा, तकनीक और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। इस बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की एक अति महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत के पास विशाल युवा आबादी, बड़ा बाजार, तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह सर्वविदित है कि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद आज भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भी एक अति विकासशील देश की ओर बढ़ रहा है। आज दुनिया की अनेक कंपनियां चीन के विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में भारत दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत ने UPI, डिजिटल भुगतान और आधार जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से यह दिखाया है कि तकनीक का उपयोग बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन केवल अवसर होना ही पर्याप्त नहीं है। अवसर तो बहुत से देशों को बहुत समय मिलते रहे हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो तमाम देश इन प्रकार के अवसरों के बगल से निकल गए हैं, लेकिन इन अवसरों को पकड़ नहीं पाए हैं। आज भारत के समक्ष भी इन अवसरों को पकड़ने की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हमें शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक सोच और कौशल विकास पर लगातार ध्यान देना होगा। यदि भारत केवल उपभोक्ता बनकर रह गया तो उसका लाभ सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि भारत इनोवेशन और उत्पादन का केंद्र बनता है तो उसकी वैश्विक भूमिका अत्यंत मजबूत हो सकती है। श्रोताओं, आज जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध, ऊर्जा संकट और व्यापारिक नीतियां सीधे आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए भारत को संतुलित और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी। हमें दुनिया से जुड़े रहना है, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करनी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया इस समय एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि तकनीकी, राजनीतिक और रणनीतिक भी है। जो देश तकनीक, व्यापार, शिक्षा और राष्ट्रीय दृष्टि के बीच संतुलन बना पाएंगे, वही आने वाले समय की वैश्विक व्यवस्था को दिशा देंगे। भारत के पास यह अवसर मौजूद है। वह केवल विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही न बने बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्तियों में भी शामिल हो।

श्रोताओं, अभी प्रोफेसर वेद त्रिपाठी ने बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बदलती भूमिका के बारे में हमें विस्तार से बताया, ताकि समाज के हर वर्ग पर इन बदलती परिस्थितियों का कम से कम असर पड़े और हम सब हर स्थिति के लिए तैयार रहें। बिल्कुल इसी तरह साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और कृषक समुदायों के हितों और उनके उत्थान के लिए समर्पित थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। तो साथियों, आज ज्ञान सागर की इस कड़ी में हम जानते हैं कि किस तरह से चौधरी जी के भूमि सुधारों और कई तरह के क्रांतिकारी कानूनों और हमेशा ही भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने की वजह से ही उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। साथियों, चौधरी जी साहब का हमेशा मानना था कि भारत की तरक्की का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है, और इसीलिए हमें हमेशा अपने अन्नदाताओं यानी कि किसानों, खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का पूरा पूरा मूल्य उन्हें देना चाहिए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी भी पूरे जीवन भर किसानों के हक, उनके सम्मान और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए आवाज़ उठाते रहे और इससे जुड़े कानून भी बनवाते रहे। उनकी इसी समाज सेवा और किसान हितैषी व्यक्तित्व की वजह से ही उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और भाई देखिए, हमारे शहर के लिए खुशी की बात यह है कि भारतीय ग्रामीण समाज के हितों से जुड़े इस नेता ने आगरा विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई पूरी की थी, और भारत सरकार ने भी उनके योगदान को सराहते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। तो साथियों भाई, आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी है, तो क्यों ना आज पाचन से जुड़े ही सेहत टिप आपके साथ साझा करें, क्योंकि भाई देखिए, गर्मी के दिनों में पाचन संबंधी जो शिकायतें हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और भोजन को आराम से धीरे धीरे चबा कर खाएं, और रात का खाना खाने के बाद 15-20 मिनट की छोटी सैर ज़रूर करें। इससे भोजन आसानी से पचता है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ ज़रूर चबाएं, तो इससे गैस और बदहजमी से छुटकारा मिलेगा। और भाई, जो रात का भोजन है वो सोने से 3 घंटे पहले ज़रूर कर लें, तो इस तरह से हम बिना बीमार हुए ज़िंदगी को हंसते गाते जीते जी पाएंगे। और ज़िंदगी के फलसफे से जुड़ा यही गीत सुनने की हमें फरमाइश भेजी है नगला पदी दयालबाग से घूरे लाल, चिरौंजी लाल, माया और पप्पन ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी साथी पूनम जैन को। आप सब हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर

0: करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadrupedite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol.

थे। परिवार की आर्थिक स्थिति विपन्न होने के कारण आपकी विद्यालयी शिक्षा में बार बार व्यवधान पड़ा, किंतु घर पर ही आपने अपने प्रयास से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। खुर्जा संस्कृत विद्यालय में जब वे छात्र थे, तब मौलाना आसिफ अली के देशभक्तिपूर्ण भाषण से प्रभावित होकर आपने परीक्षा त्याग दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। इन्होंने 1930, 1932 और 1942 में जेल यात्रा की। आप अनेक राष्ट्रीय नेताओं के घनिष्ठ संपर्क में रहे और स्वतंत्रता का सपना लेकर हिंदी साहित्य क्षेत्र में निरंतर लेखन कार्य में संलग्न रहे। स्वतंत्रता सेनानी जीवन के अनेक संस्मरणों का मार्मिक चित्रण आपने किया है। अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और पीड़ित मानवता के प्रति करुणा इनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। प्रभाकर जी ने नया जीवन तथा विकास नामक पत्रों का संपादन किया, जिनमें आपके राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं से जुड़े लेख प्रकाशित होते थे। आपके लेखन की प्रमुख भूमि है निर्भीकता और आशावादिता। मई 1995 में आपका निधन हो गया। प्रभाकर जी हिंदी के उन रचनाकारों में गिने जाते हैं जिनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। आपने अनेक विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्काए आपके द्वारा रचित ललित निबंध संग्रह हैं। दीप जले शंख बजे आपके संस्मरणों का संकलन है, तो माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कराई आपके रेखा चित्रों के संकलन है। प्रभाकर जी की लघु कथाएं धरती के फूल और आकाश के तारे नामक संग्रहों में संकलित हैं। प्रभाकर जी के संस्मरणों का स्वरूप कैसा है, इसका पता भाई राजा राम पर लिखे उनके संस्मरण से चलता है। भाई राजा राम अपनी मस्ती एवं मटर गस्ती के लिए विख्यात थे। मलमल का कुर्ता, चिकन का अचकन, पल्लेदार टोपी, जरी का जूता और चकाचक भंग पीकर वे प्रतिदिन मटर गस्ती करते और पिताजी की मेहनत से कमाई गई पूंजी को शान से खर्च करते। तभी अचानक नगर में प्लेग की महामारी फैल गई और सारा शहर आतंक से त्राहि त्राहि कर उठा। भंगड़ी भाई राजाराम सुबह घर से निकलते और रात में लौटते। दिन भर प्लेग के रोगियों की देखभाल, सेवा शुश्रूषा करते, किसी को पानी पिलाते, किसी की दवा लाते, किसी के पैर दबाते तो किसी का कमरा धुलवाते और किसी का बिस्तर बदलते। माँ रोकती पर वे कब मानते, कहते, अरे माँ, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, मुझे कुछ नहीं होगा, जब परवाना कटेगा तो घर के भीतर से भी बांह पकड़ी जाएगी। भाई राजाराम के पक्के दोस्त थे राधे, जो घर में अकेले ही थे। उन्हें प्लेग ने दबोच लिया। राधे के पास रजाई न थी। भाई राजाराम दौड़े दौड़े घर आए और माँ की आंख बचाकर अपनी रजाई उन्हें दे आए और दो रात राधे के पास रहकर उनकी सेवा करते रहे। राधे को तो उन्होंने बचा लिया, पर स्वयं प्लेग की चपेट में आ गए। रजाई लेकर जब वे घर लौटे तो माँ ने देखा माथा गर्म था और वे कुछ सुस्त थे। दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी अभी केवल 18 वर्ष की थी और सारा शहर उस विधवा का दुख देखकर रो रहा था। प्रभाकर जी को अपने बड़े भाई की इस आहुति में जो सुगंध दिखाई देती है, उसकी प्रेरणा निश्चय ही अमर अजेय है। प्रभाकर जी की भाषा में अद्भुत प्रवाह और सहजता है। उनका वाक्य विन्यास पात्र और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। भाषा में अंग्रेजी, उर्दू के बोलचाल के शब्द हैं तथा भावानुकूल वाक्य विन्यास और सुंदर उक्तियां उसे आकर्षक बनाती हैं। मिश्र जी की भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है, साथ ही उसमें व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन जैसे गुण विद्यमान हैं। प्रभाकर जी ने अपनी रचनाओं में आवश्यकता के अनुरूप अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। कहीं वर्णनात्मक शैली में वे वर्णन प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं भावात्मक शैली में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए हृदय के भाव व्यक्त करते हैं। उनके रेखाचित्र के शब्दों में व्यक्ति का ऐसा चित्र प्रस्तुत होता है कि पूरा व्यक्तित्व ही पाठकों के सामने साकार हो जाता है। मदर टेरेसा का यह चित्र शब्दों में देखिए। देह उनकी 45 वसंत देखी हुई, वर्ण हिमशेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। भावुकता के क्षणों में प्रभाकर जी का वाक्य विन्यास व्याकरण की जंजीरों को तोड़ देता है,

0: निश्चय ही प्रभाकर जी शैली की दृष्टि से विशिष्ट एवं मौलिक लेखक कहे जा सकते हैं। मानव मूल्यों के सजग प्रहरी एवं देशभक्त साहित्यकार के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में वार्ता, जिसका विषय था कन्हैयालाल मिश्र की हिंदी साहित्य सेवा। वार्ताकार थे डॉ. अशोक तिवारी। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को

0: को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: विदेश के किसानों के मसीहा थे
0: के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी

0: हमारा दायित्व है, इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रूपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रूपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी

0: समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्ष की परंपरा के अवसर पर आकाशवाणी आगरा द्वारा आयोजित सुगम संगीत संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए मेरा यानी श्री कृष्ण का, मेरी साथी उद्घोष का हरप्रीत कौर के साथ आत्मीय अभिवादन।
1: नमस्कार आदरणीय महानुभावों, संगीत के रसिकों और सुर साधकों, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित इस सुगम संगीत संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आवाज भी बस एक राज है, हर नगमे में एक दुआ, चलो इस राह पर हम सुरों से करें मुलाकात।
0: बिल्कुल, सुरों से मुलाकात होगी। आप सब आकाशवाणी परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि चाहे कंटेंट क्रिएशन हो या श्रोता के रूप में, आपके बिना हम अधूरे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। जैसा आपको विदित है, हमारी परंपरा है, हम किसी भी आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं, माँ सरस्वती का आराधन और इस प्रार्थना के साथ कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करें। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ हमारे आकाशवाणी परिवार के मुखिया, जिनके नेतृत्व में आकाशवाणी आगरा निरंतर नित नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रहा है, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी, क्लस्टर प्रमुख क्षेत्रीय चैनल मैनेजर श्री मयंक कुमार जी, कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल सिंह जी, हमारे इंजीनियर राजेश वाजपेयी जी सहायक अभियंता, डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण कार्यक्रम अधिकारी, मोहित कुमार जी संगीत के जो प्रमुख हस्ताक्षर, आप सबसे विनम्र अनुरोध, कृपया दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। आइए आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान करेंगे।

0: आप स्थान ग्रहण करें। ये वो गीत था जिसने एक लंबे समय तक प्रत्येक भारतवासी के मन में चेतना जागृत की और राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा पैदा किया जो आज तक कायम है और युगों युगों तक यूं ही कायम रहेगा। हमारी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका अपने दिल की गहराइयों से आने पर खुशी व्यक्त करते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आकाशवाणी आगरा के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनेंद्र सिंह जी को कि वे कृपया आएं और अपने तमाम अतिथियों का वाचिक परंपरा से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री अनेंद्र सिंह।
1: सभी उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित कलाकारों, साहित्य एवं संगीत प्रेमियों, मीडिया जगत से जुड़े साथियों और प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह अवसर केवल एक संगीत संध्या भर नहीं बल्कि भारतीय लोक प्रसारण की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्षों का उत्सव एक भावपूर्ण पड़ाव है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जिसने पिछले 90 वर्षों में भारत की आवाज़ को संजोया, साझा किया और संपूर्ण देश की एकता को एक सूत्र में बांधा। एक ऐसे मंच का जिसने आवाज़ को पहचान दी, विचारों को पंख दिए और भावनाओं को घर घर तक पहुंचाया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को अपना ध्येय बनाकर ये माध्यम एक राष्ट्रीय आवाज़ बना जिसने भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म इन सब से परे रहकर देश को जोड़ने का कार्य किया और इसी महान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय ये है आकाशवाणी आगरा। 16 जनवरी सन 1989 को स्थापित इस केंद्र ने पिछले लगभग 37 सालों में ब्रजभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को निभाया है और सुलह कुल की इस नगरी आगरा से लोक प्रसारण का यह केंद्र केवल ध्वनि तरंगों का माध्यम भर नहीं रहा बल्कि विगत लगभग 4 दशकों से यहाँ की लोक परंपराओं, साहित्यिक चेतना, संगीत साधना और जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। हमारा यह केंद्र ब्रज संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भी निरंतर सक्रिय रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है कि आकाशवाणी ने हमेशा ही नई प्रतिभाओं को अवसर देने और उन्हें सशक्त मंच प्रदान करने का कार्य किया है। अनेकों स्थानीय गायकों, कवियों, लोक कलाकार और रंगकर्मी कलाकारों ने आकाशवाणी से साथ में जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। आज कुछ ऐसी महान विभूतियों को जिन्होंने आकाशवाणी की 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के ऐतिहासिक सफर में उसके हमसफर बनते हुए बीते 3 से 4 दशक अनवरत रूप से आकाशवाणी आगरा के साथ जुड़कर क्षेत्र के लोगों की सेवा की है और अब 75 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, ऐसे अनमोल और अनुभवी रत्नों को आज इस गौरवमयी अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित करके आकाशवाणी आगरा केंद्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी से जुड़े सभी वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों और प्रस्तोताओं तथा उन समस्त देखे अनदेखे हाथों को भी हृदय से नमन करना चाहता हूं जिनके समर्पण ने आकाशवाणी को सिर्फ 90 वर्षों पुराना ही नहीं बल्कि 90 वर्षों का युवा अनुभव बनाया है और सबसे महत्वपूर्ण उन कलाकारों का, उन साहित्यकारों और सुधी श्रोताओं का जिन्होंने आकाशवाणी को जिंदा रखा है और जिनके कारण ये सिर्फ प्रसारण संस्था भर नहीं बल्कि पूरे भारत देश की धड़कन बन सका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आज की सुगम संगीत संध्या की सफल और यादगार आयोजन की मंगल कामना के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, कोटिशा वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल सिंह जी। जिधर नजर जाती है वहाँ पर व्यक्त नहीं व्यक्तित्व विराजमान है, अपने आप में संस्था हैं, चाहे संगीत हो, कला हो, चाहे वो शायर हो, चाहे गीतकार हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, जो भी हैं अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं।
2: वर्ष 1923, एक छोटी सी ट्रांसमीटर से भारत में रेडियो के सफर की शुरुआत हुई। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने भारत में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया। इस तरह ये छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन गई। भारतीय प्रसारण के इतिहास में 8 जून 1936 का वो दिन एक ऐतिहासिक पल के रूप में दर्ज हुआ जब एक नई पहचान के साथ रेडियो की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। 8

0: कच्छ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। समय के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो देश का राष्ट्रीय प्रसारक और एक विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में अब स्थापित हो चुका था। तो आकाशवाणी केवल सूचना और समाचारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय कला, संगीत और संस्कृति का एक विशाल मंच बन चुका था।
1: आकाशवाणी आज देश की लगभग 100% जनसंख्या तक अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। पहले बड़े रेडियो सेट चला करते थे, लेकिन तकनीक के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने आप को अपग्रेड किया और आज ऐप के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR या सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आप पूरी दुनिया में आकाशवाणी कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड साबित होता है कि कैसे रेडियो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है। आज आकाशवाणी आगरा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कला से रेडियो को समृद्ध किया है। आज अवसर है उन्हें सम्मानित करने का। और जो ऐसे कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार, विद्वत समाज जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका आज हम अपने दिल से नमन होकर उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और उन्हें सम्मानित कर हम अपने आप को सम्मानित करना चाहते हैं। तो अपने तमाम जो हमारे वरिष्ठ कलाकार, साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं एक बार उनका नाम पढ़ रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप यहाँ पर आएंगे और हमारे अधिकारीगण आपका सम्मान करना चाहेंगे। बड़े आदर के साथ मैं नाम ले रहा हूँ। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर उषा यादव जी, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत आगरा कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर शशि तिवारी जी, कवि व साहित्यकार आदरणीय श्री राजेंद्र मिलन जी, आदरणीय श्री अरुण डंग साहब, उर्दू शायर और साहित्यकार जनाब वसीम बेग दिल ताज महली, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि प्रोफेसर सोम ठाकुर जी, हवेली संगीत के मर्मज्ञ डॉक्टर सत्यभान शर्मा जी, सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, लोकगीत के विद्वान डॉक्टर नरपत देव भारद्वाज जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय शैल अग्रवाल जी, उर्दू शायर जनाब शाहिद नदीम साहब, लोकगीत के जाने माने कलाकार श्री अशोक कुमार मथुरिया जी, वरिष्ठ कवि श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, लोकगीत की एक और वरिष्ठ कलाकार श्रीमती उमा देवी गौतम, सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राम सनेही लाल शर्मा जी, अलीगढ़ के एक और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी, आगरा की हमारी सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती रमा रानी वर्मा श्याम जी, लोकगीत की एक और कलाकार कृष्णा कुमारी माथुर जी, और आगरा साहित्य में एक और नाम बड़े आदर से लिया जाता है, श्रीमती शैलबाला अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ कवि हैं श्री शलभ भारती जी, लोकगीत और नौटंकी के कलाकार रचनाकार डॉक्टर ब्रिज बिहारी लाल वर्मा बिरजू, सुगम संगीत में जिनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और वो नेत्र सर्जन है, आदरणीय डॉक्टर HP सिंह साहब, अलीगढ़ से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरिराज किशोर जी, और साहित्यकार संस्कृति धर्मी श्री अरुण कुमार डंग जी, आप सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया यहाँ मंच के आगे पधारने का कष्ट करें जिससे हम आपका सम्मान कर सकें। और अब क्रम है सुगम संगीत संध्या के मंची कार्यक्रमों का। सबसे पहले ग्वालियर घराने की उभरती हुई प्रतिनिधि कलाकार जिन्हें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत में गीत, भजन और गजल गायकी में समान अधिकार प्राप्त है, सुश्री शुभ्रा

तलेगांवकर। आपके साथ संगत कलाकार हैं ऑक्टोपेड पर भीम शिरोमणि, तबले पर श्री मिथिलेश कुमार, सितार पर श्री भंवर सिंह खींची, हारमोनियम पर पंडित रविंद्र तलेगांवकर, ऑर्गन पर श्री मनीष शर्मा, स्पेनिश गिटार पर श्री रमेश चंद्र।

आज की इस मखमली शाम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ श्री सुधीर नारायण जी। सुधीर जी की गजलें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर बड़े अदब से सुनी जाती हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजे गए और बेगम अख्तर अवार्ड से सम्मानित किए गए सुधीर जी का आकाशवाणी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है।

सौंप ने एक शेर कहा था जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे इब्राहिम सौंप, उन्होंने शेर कहा था, लाई हयात, हयात यानी कि जिंदगी, लाई हयात आए कजा यानी कि मौत, लाई हयात तो आ गए और कजा ले चली चले। लुक एट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइक जिंदगी मौत, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।

0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सब की ओर से। और आइए चलते हैं आज की इस सुरमई संध्या के अगले चरण में, जहां पर सूफियाना कलाम आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बड़े अदब के साथ सुप्रसिद्ध कव्वाल जनाब सलीम हसन चिश्ती और साथी। जोरदार तालियों के साथ जनाब सलीम हसन चिश्ती जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत है आपका।
2: आपके साथ संगत कलाकार जो प्रस्तुति देंगे, ऑर्गन पर प्रस्तुति देंगे मनीष शर्मा और फरमान खान ढोलक पर और तबले पर। साथ ही हम नूरुद्दीन जी को आमंत्रित करते हैं, आप बेंजो पर संगत करेंगे।

आप सभी हजार से नैना मिलाएंगे, ये तो मैं बाद में कह दूंगा, सुना दूंगा आपको, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जो कुछ बताया टूटा फूटा सा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तवज्जो दूंगा।

कुछ पसंद आ रहा है आपको कुछ? थैंक यू। अब मैं आपकी खिदमत में नजर करता हूं। एरी सखी मोरे पिया घर आई।

ये संगीत जोड़ने का काम करता है, प्यार मांगता है, मोहब्बत मांगता है। इसमें अगर जो भी कुछ अगर दुनिया में किसी ने सीखा है, चाहे वो कोई भी शब्द, वो संगीत उसका एक माध्यम है। दुनिया में हम तो इंसान हैं, जानवरों पर भी इसका असर होता है, तो बगैर इसके

0: अगर आनंद आ रहा है सच में तो मेरा जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए इन कलाकारों के सम्मान के लिए।
1: थैंक यू
0: क्योंकि कलाकारों के असली दाद आपकी तालियां ही हैं। एक और सुन लिया जाए, क्या आप लोगों की राय है? एक और सुन लिया जाए, चलिए। आप सबकी इजाजत है, आदेश है।
1: बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, दमादम मस्त कलंदर।

0: वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, खासकर तब जब महफिल इतनी हसीन हो। आज की ये शाम, ये भजन, ये गीत, ये गजल, ये कव्वालियां और आप सबका साथ हमेशा हम सबके दिलों में महफूज रहेगा। अब हमारे कलाकार, इनका हम सम्मान करें स्मृति चिन्ह और इस पूरी व्यवस्था सेंट जॉर्जेस कॉलेज की तरफ से जो हमें प्राप्त हुई है, उनका सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके आदरणीय प्रधानाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्री अक्षय जरमाया जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय उप महानिदेशक महोदय से अनुरोध है, कृपया वे मंच पर आए। हमारे कार्यक्रम प्रमुख अनिल सिंह जी से अनुरोध, कृपया हमारे आज के कलाकार जनाब सलीम हसन चिश्ती जी का उन्हें हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें और आज के प्राचार्य जी हमारे जो सेंट जॉर्जेस कॉलेज के हैं उनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। जनाब सलीम हसन चिश्ती को एक स्मृति चिन्ह आदरणीय प्रधानाचार्य जी प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। अब बारी है हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य हमारे सहयोगी सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय अक्षय जरमाया जी को उन्हें सम्मानित करने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सहयोग से इतना सुंदर आयोजन यहाँ संभव हो पाया। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजित सुगम संगीत संध्या मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आज के सभी फनकारों का जिन्होंने अपनी कला से इस शाम को अमर बना दिया। शुक्रिया आप तमाम कद्रदान श्रोताओं का जिनके बिना ये महफिल अधूरी थी। और अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ उप महानिदेशक अभियांत्रिकी महोदय से, श्री मयंक कुमार जी से, कि वे कृपया आए और अपने तमाम कलाकारों और सभी के प्रति उपस्थित अतिथियों के प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करने कष्ट करें। आदरणीय श्री मयंक कुमार जी।
1: कार्यक्रम को सर देने वाले सभी सम्मानित कलाकार, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ आकाशवाणी के कलाकार, श्रोतागण, दर्शक, सभी आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी और मेरे सहकर्मी साथी, नमस्कार। आज की शानदार सुगम संगीत संध्या में पधारे हुए समस्त सम्मानित आगंतुकों के प्रति आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापित करता हूँ। आशा है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा द्वारा आपकी सेवा में आयोजित इस संगीत संध्या का आप सबने लुफ्त उठाया होगा। 90 वर्ष की यात्रा में आकाशवाणी ने अनेक सुनहरे मुकाम हासिल किए। शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने और उसे प्रोत्साहन करने में आकाशवाणी की भूमिका अप्रत्याशित रही है। कभी ऐसा भी दौर था जब आकाशवाणी में फिल्म संगीत

0: का प्रसारण नहीं होता था, परंतु जब एक विविध भारती और अन्य केंद्रों से इसकी शुरुआत हुई तो फिर ये इतिहास में दर्ज कहानी है। इन्हीं सुनहरे 90 वर्ष की यात्रा आयोजित करने के हमारे महानिदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में हमने आज ये सुगम सजीव संगीत संध्या आयोजन की है। सबसे पहले मैं सेंट जॉर्जेस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अक्षय जन्मेय जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये शानदार ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया, इस संगीत संध्या को साकार होने में मदद की। मैं कॉलेज के समस्त स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। आज की इस संगीत संध्या के मुख्य आकर्षण हमारे 3 कलाकार सुश्री शुभ्रा तालेगांवकर, सुधीर नारायण जी का तथा जनाब सलीम हसन चिश्ती साहब की रूहानी सुकून देने वाली प्रस्तुति हम लोगों ने सुनी। सभी कलाकारों और इनके साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई। आज इस कार्यक्रम के आयोजित करने में मेरे अपने आकाशवाणी आगरा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अद्वितीय रही है। सबने विगत 15 दिन के निरंतर मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाशवाणी आगरा के 1989 में आरंभ से लेकर आज तक इस केंद्र से जुड़े कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों, अभियंत्रकियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को ऊंचाइयाँ प्रदान की। आज हम वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की सूचना दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में प्रेस एवं मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। हम समस्त प्रेस और मीडिया के समस्त प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही दूरदर्शन से आए हुए हमारे जो साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं सफल संचालन करने वाले हमारे श्री श्री कृष्ण जी और इनके जो मैडम इनके साथ थी अर्पित कौर मैडम, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने बहुत सफल संचालन किया। अंत में सभी आगंतुकों का एक बार फिर से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और इस सुगम संगीत संध्या का आनंद उठाया। आपका ऐसा ही सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: मैं बस एक लाइन बोलूंगा चलते चलते, बशीर बद्र साहब का शेर है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।

0: की रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम

0: स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाण लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो

0: पैमाने पर चर्चा हुई है, तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रहे जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: महेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा

कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी

0: आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week.

0: The rupee strengthened by 70 paise to close at 95 rupees against the US dollar. Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: And now on to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 171 for 5 in 17 overs against Gujarat Titans in the qualifier 2 match in New Chandigarh when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bat. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday in Ahmedabad. India's men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of the Singapore Open Badminton Tournament today. In the mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also managed to enter the semi-finals after their Malaysian opponent, Toh A. Wei, sustained an injury to her knee and had to retire. The IMD has said that the prevailing heat wave have abated from most parts of northwestern parts of the country and it is likely to abate from most parts of the central India from tomorrow. It forecasts thunderstorm activity accompanied by squally winds over northwest, central and east part of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasso also advance to semi-final. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद. वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है. हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है. वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं. मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है. और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है. अब खबरें तफसील से. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है. वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे. वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके. वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया.
3: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है. एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी. ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं.
2: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की.

0: है जो आबादियाती तब्दीलियों का बायस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक्कदा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजाकिरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
1: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाजे किया कि फैसला सुनाने में ताखिर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और जेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की जरूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासिद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था जबकि ऐसा

0: नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज्जम और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल को फौरी असर से तहलील कर दिया, ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोछर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन किया गया था। मिसाइल और गन सिस्टम के माहिर अजय कोछर ने अपने 37 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान कमांड ऑपरेशनल और स्टाफ असाइनमेंट की वसी तर जिम्मेदारी संभाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आपनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के मफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी जेर इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालिबा करता है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अलीग तावन काउंसिल जीसीसी ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज्जम मैकेनिज्म के क्याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नजर से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयां और नकले मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पीटीएम कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के जिम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि

0: अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: करंट अफेयर्स, This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on 10 years of Insolvency and Bankruptcy Code, strengthening India's insolvency and resolution framework. The participants are Dilip Chinoy, former Secretary General FICCI, and A.K. Bhattacharya, economic analyst. Moderator is Arjun J. Chaudhary.
2: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we would be discussing on the insolvency framework in India with reference to the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act of 2026 and its reforms of the IBC 2016. Already, three amendments have taken place in 2018, 2020 and 2021. The theme is from financial distress to structured solution for stakeholders. So we are joined by two experts to enrich this discussion: Dilip Chinoy, former Secretary General at FICCI, and A.K. Bhattacharya, also known as AKB, who is an economic analyst. So, warm welcome to both our experts for this in-depth discussion.
3: Thank you.
4: Thank you.
2: So, just to give our listeners some context, insolvency is a situation where an entity or even a person is unable to meet their financial obligations. Bankruptcy is when the court declares a person or entity unable to meet their financial obligations, and there are protections involved as well, including the protection of the stakeholders. In this case, we will be discussing about how creditors are also taken care of. So let's begin with the AKB, which seems to have given a layman's understanding of what the Insolvency and Bankruptcy Code is. There have been multiple amendments as well. How do you see the new Amendment Act of 2026 benefiting all the stakeholders?
3: Well, this is a long story. India's tryst with resolving insolvency has been there from almost 1980s. When the BIFR was set up, the Board of Industrial and Financial Reconstruction, and there were debt recovery tribunals, various exercises that took place until sometime in the noughties or the first decade of the 21st century, the thought came that you need to have something like what happens in the developed countries, which is an insolvency resolution platform. And then the idea arose that let's have something called Insolvency Bankruptcy Code, which is little, was supposed to be something like the Chapter 11 of the US law. Now, the four broad criteria of deciding on the IBC in 2016, first, we need to understand that it was supposed to be

0: applicable here. Section YZ will come in later. So there are sections here which are not being executed. So we need to look at that going forward.
1: I think we're running out of time, but it has been a tremendous in-depth discussion with both our experts, Dilip Chinoy, former Secretary General at FICCI, and AKB, AK Bhattacharya, economic analyst on this forum, which is the Akashvani Network. And I'm glad we had a great talking points on the insolvency framework in India with reference to the IBC Amendment Act of 2026 and its reforms of the IBC 2016. Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you.
3: You were listening to a discussion on 10 years of Insolvency and Bankruptcy Code, Strengthening India's Insolvency and Resolution Framework. The participants were Dilip Chinoy, former Secretary General FICCI, and AK Bhattacharya, economic analyst. Moderator was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Current Affairs.
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। कार्यक्रम का पहला गीत है दामिनी फिल्म से, जिसे स्वर दिए हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है समीर की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस गीत की फरमाइश की है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और शारांश। आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है दामिनी फिल्म का ये गीत।

0: सुने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम

0: सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है पाकीज़ा। शब्द रचना है कैफे आजमी की, संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत की फरमाइश की है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है ये वादा रहा। शब्द रचना है गुलशन बावरा की, संगीत दिया है आरडी वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश की है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरैगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है आबरू। शब्द रचना है जीआर रावल की, संगीत दिया है सोने कोमी ने। इस गीत की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक ने।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है आजा मेरी जान। शब्द रचना है माया गोविंद की, संगीत दिया है अमर उत्पल ने। इस गीत की फरमाइश की है लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, आदित्य कसाना ने।

इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में हमारी आज के कलाकार हैं शुभ्रा तलेगांवकर। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग सरस्वती में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में शुभ्रा तलेगांवकर का राग सरस्वती में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात

निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 01118004 and through email at resultcbse2026@cbseshiksha.in. In IPL cricket, chasing a target of 215 runs set by Rajasthan Royal, Gujarat Titans were 185 for 2 in 15.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी कल प्रातः 5:50 पर प्रातःकालीन सभा में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।